जिन्हें प्रभु नु विस्तारता ने। जे दुनिया दे विच कोई गरीब है, जे दुनिया दे विच किसे ते तरस योग, कोई तरस योग है जिदे ते तरस कीता जा सकदा है, वो है सोई मलीन दीन हीन जिस प्रभु विसरा, जिन्हों प्रभु भुल गया ना, वो व्यक्ति सब तो दीनहीन व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है। कुछ होर प्रमाण सुनो, भगत कबीर जी कहते हैं, कहते हैं वह जीवन इदा का है कि कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर।

0: मैली अवगण चेता बिन गुर गुणनाथ मावणी बलराम जियो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: परम सम्मान योग्य

0: अर्थ है टेका घर। सतसंग जी, ए मात लोक पौनी नाम है प्रौनी दा। सतगुरु जी कहंदे ए जीव इस्त्री इस मात लोक रूपी पेके घर विच चार दिनों की प्रौनी है। जिवें विद्वाना ने विचारिया सतसंग जी चार अवस्थावां सतगुरु जी ने गुरबाणी विच तीन दर्शाईयां ने, बालक अवस्था, जवानी की अवस्था ते बुढ़ापे की अवस्था, और इस दे नाल सहज सतगुरु पातशाह जी ने गुरबाणी विच दस्या, जिवें आप कल भी विचार कीते सी ना, दस साल तक बालक, वीह साल तक कुमार, गुरु प्यारे तीह साल का यह सुंदर जवान हुंदा है। इस तो अगे फिर बुढ़ापा। ये चार अवस्थावां चार दिन गिणिया गया। ये जीव इस्त्री मात लोक रूपी पेके घर विच चार दिनों की प्रौणी है। बल का अर्थ है सदके, आराम का अर्थ है परमेश्वर। हे अकाल पुरख वाहिगुरु, मैं आप जी तो बलिहार सदके जाता हाँ। आप जी ने कैसी रचना रची हुई है। यह जीव इस्त्री पर जवानी दे विच, जवानी दे नशे विच ही मस्त है। इनू एक ख्याल ही नहीं कि मैं इस पेके घर में आखिर एक दिन छड़ जाना। सब सतगुरु पातशाह जी ने गुरबाणी विच दर्शाया, जित दिहाड़े धन वरी, साहे लए लखाए, मलक दे कन्नी सुनी दा, मोह दे खाले आए। जिंद न माणी कढ़िया, हड्डा कूकड़काए, साहे लिखे न चलनी, जिंदू कू समझाए, जिंद बहुती मरन वार, लै जासी परनाए। सतसंगत, जिस दिन इस जीव इस्त्री का वर होया, उस दिन तो ही इहदा साहा लिखिया गया है। भाव जिस दिन तो इस जीव इस्त्री का माता के उदर विच प्रकाश होया है, उस दिन तो ही इहदे मत्थे दे उत्ते साहा अटल बनिया। पूर्ण संजोगो राम साहा लिखिया गया है कि इन्ना क समा तो पेके घर विच रहना। गुरु प्यारे, आखिर ओ मौत रूपी वार जेड़ा कन्ना नाल सुनी दा सी ना, हुण उसने आप मुंह विखा लिया और हड्डा नूं कड़का कड़का के इस जिंद रूपी वहुटी नूं, इस्त्री नूं इस शरीर रूपी घर दे विचों कढ के लै गया। सच्चे पातशाह जी कहिंदे इस जीव इस्त्री ने जवानी के नशे विच यह समझिया ही नहीं कि मैं आखिर एक दिन पेके घर नूं छड जाना है। मैं तो इत्थे प्रौणी हाँ।
1: महली अवगण चेता,
0: सच्चे पातशाह जी कहिंदे जिस जीव इस्त्री दे चित विच

शुभ गुण नहीं समा सकते। भांडा मैला हो गए तो साध संगत जी उस भांडे दे विच चंगी वस्तु नहीं पाई जा सकती। जिवें भांडा लिबड़िया हो गए तो उहदे विच आपां दुध नहीं पाउंदे। भांडा धोए बैस धूप देव हो तो दुधे तो जाव हो। जिवें पहला भांडे नूं मांजिया जांदा है धोता जांदा है फिर उहदे विच दुध पाया जांदा है। जिस जीव इस्त्री दा चित अवगुणां करके काम क्रोध विशिया विकारा करके मैला होया पिया है, गुरु प्यारे उस चित दे अंदर उस हिरदे दे अंदर सत संतोख दया धर्म इत्यादिक शुभ गुण जेड़े उह नहीं समाउंदे। पर गुण किवें समाउणगे? सतगुरु जी कहिंदे बिन गुर गुण ना समावनी बलराम जीओ। गुरु तो बगैर शुभ गुण हिरदे विच नहीं टिक सकदे। गुरु तो बगैर इस जीव इस्त्री दे अंदर लगी हुई अवगुणा की मैल दूर नहीं हो सकती। ये अवगुणा की मैल किवें दूर होवेगी? साध संगत जी सच्चे पातशाह जी कहिंदे सेवा तो सिमरन कीत्या अवगुणा की मैल दूर होवेगी। हुण इस मन नूं मैल एक जन्म दी नहीं लगी। सतगुरु जी कहिंदे जन्म जन्म की इस मन कौ मल लागी काला होआ सिया हो। जन्मां जन्मात्रां दी इस मन नूं मैल लगी हुई है अवगुणां दी विकारां दी। इस करके इहदे अंदर शुभ गुण टिकदे नहीं। कई बार कई वीर सवाल भी करदे ने ते साडा बाणी पढ़न नूं चित नहीं करदा। जो सिमरन करते हाँ तो नींद आ जाती है, सिमरन के विघन पै जाता। वह कारण है

0: ते शुभ गुण की ने अवगुणा दे नाल ही इन्हें नेह ला रखिया प्यार ला रखिया दिन रात अवगुणा दे विच ही जुड़ी हुई है। सच्चे पातशाह जी कहिंदे इस जीव रूप इसत्री ने भरम विच भुल के शुभ गुणा की कदर नहीं जानी।
1: जोबन बाद गवाया
0: जोबन जवानी की अवस्था ये शौक रूपी अवस्था जी है ना, जिस शौक रूपी अवस्था दे विच गुरु प्यारे उस जीव इसत्री ने सिमरन भजन करना सी बाणी पढ़नी सी वो जोबन की अवस्था बाद व्यर्थ ही इसने गवा ली है। किसी कवि का कथन है वो कहिंदा पैसा करके तरन को तरन अवस्था आहे। सत्संग जी बालक अवस्था विच भी नहीं तरिया जा सकता। सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी कहिंदे बालक बुद्ध अचेत। बालक अवस्था जिहड़ी बुद्ध है ना ये चेते तो रहत है, इनू कोई चेता नहीं। इस करके बालक अवस्था विच भी सत्संग जी इस संसार में तरिया नहीं जा सकता। और जवानी की अवस्था है अमृत वेले उठना, स्नान करना, बाणी पढ़नी, सिमरन भजन करना। पर जब जवानी ढल जाती है ना, बुढ़ापा आ जाता है, तो गुरु प्यारे बुढ़ापे दे विच भी तरिया नहीं जा सकता। हुण जे कोई बुढ़ा कहे कि वह नदी जा दरिया करके पार हो जावा, नहीं तर सकता, क्योंकि शरीर पक्षों कमजोर हो चुका है। इस तरह सत्संग जी जे कोई चाहे कि मैं बुजुर्ग अवस्था दे विच जा करके संसार नूं तर लवां, तो बहुत मुश्किल है। भाई गुरदास जी ने बेअंत उदाहरणां दित्तियां ने ना कि घर नूं अग लगी होवे तो कोई कहे कि मैं खूह पुट के और पानी कढ के अग बुझावां, नहीं बुझा सकता। जंग लगी होवे कोई कहे कि मैं शास्त्र विद्या सीख के सिपाही बन के जंग नूं जित लवां, भाई साहब जी कहिंदे नहीं सीख सकता। शास्त्र विद्या पहला सीखनी पवेगी, खूह पहला पुटना पवेगा। सत्संगत इस तरह संसार समुंदर को तरन वास्ते पहला नाम जपना पवेगा। जे जवानी की अवस्था व्यर्थ गवा ली तो बुढ़ापे की अवस्था तो संस्या के लंघ जाती, संस्या के रात में बंदा गिनतियां करता रहिंदा है, सिमरन भजन वाले पासे मन जुड़ता ही नहीं कि इन्हें जी मेरे हथा विच चले गए, मैं इन्ना धन कमाया, मैं आ कीता वो कीता। सारी सारी रात ऐसा विचारां दे विच ही पिया रहिंदा है, सिमरन भजन वाले पासे उहदा मन नहीं जुड़ता। सच्चे पातशाह जी कहिंदे जोगन बाद गवाया, ये जवानी की अवस्था झगड़िया के गुवा ली करके कभी किसी ना लड़ पिया, कभी किसी ना लड़ पिया। सच्चे पातशाह जी कहिंदे झगड़िया के व्यर्थ ही इसने अपना जोगन ये जवानी की अवस्था शौक रूपी अवस्था गुवा ली है।
1: वार धार दर दर्शन नहीं जाता,
0: सत्संग जी वर का नाम है पति, घर का अर्थ है शरीर। वह परमात्मा इस शरीर घर के अंदर है, पति परमात्मा शरीर घर के सुभायमान है। धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी कहते हर मंदिर यह शरीर है, यह शरीर उस मालक का मकान है, मंदिर है। भाई विद्वान कहते ना भाई इस शरीर रूपी मकान नूं बद शकल ना बना, परवट्टे मनाने, दाड़ा पत्रा देना, सिर दे केस कतल करवा देने, गुरु प्यारे इस मकान नूं ढहण दी आवत कईआं दी बन चुकी है।

लाई राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख सम करू नाम न छोड़ाऊ आपे बख्श मिलावन हारा रहाऊ कानिक कामणी हेत गवारा दुबदा लागे नाम बिसारा जिस तू बख्शे नाम जपाए दूत न लाग सके गुण गाए हर गुर दाता राम गोपाला ज्यों भावे त्यों राख दयाला गुरमुख राम मेरा मन पाया रोग मिटे दुख ठाकर आया अवर न औखद तंत न मंता हर हर सिमरण किले विकहंता तू आप भुलावहे या नाम विस्तार तू आपे राखहे कृपा तार रोग भरम भेद मन दूजा गुर बिन भरम जप है जप पूजा दूजा आदि पुरख गुर दर्शन देख बिन गुर शब्द जन्म के लेख है देख चर्ज रही बिस्माद कट कट सुर नार सहज समाद भरपुर धार रही मन माही तुम समसार समसार अबर को नाही जाकी भगत हेत मुख नाम संत भगत की संगत राम बंधन तोरे सहज त्यान छूटे गुरमुख हर गुण ज्ञान ना जम दूत दुख तिस लागै जो जान राम नाम लिवला जागै भगत वशल का भगता हर संग नानक मुक्त भय हर रंग आसा महला पहला एक तुकी गुर सेवे सो ठाकुर जानै दुख मिटै सच शब्द पछानै राम जपो गो मेरी सखी सखैनी सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी राउ बंधन मात पिता संसार बंधन सुत कन्या अरनार बंधन कर्म धर्म हों किया बंधन पोत कलात मन बिया बंधन किरखी करह किरसान हो मैं डन सहे राजा मंगे दान बंधन सौदा अणविचारी तपत नाही माया मोह पसारी बंधन शाह संचय तन मजाए बिन हार भगत न पवई थाए बंधन भेद बाद अहंकार बंधन बिनसै मोह विकार नानक राम नाम शरणाई सतगुर राखे बंधना पाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोधार राग आसा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोधार तेरा केहा सो कर केहा जित मैं सर्व संभाले वाजे तेरे नाद अनेक संखार केते तेरे वावण हारी केते तेरे राग परिसों कही है केते तेरे गावण हारी गावन पुदनो पवन पाणी बसंत गावे राजा धर्म द्वारी गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारी गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारी गावन तुदनो इंद्र इंद्र आसन बैठे देवत्यां दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सति संतोखे गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मश पायाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे अठसठ तीरथ नाले गावन तुदनो जोध महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदन गावन से मैं चितन आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पी होसी जाय ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन पाई
कर कर देख

अस्तु। हम कीरे केरम सदगुर सरनाई कर दया न हम प्रगास। मेरे मीत गुरुदेव मोकौ राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास राव। हर जन केवड़ भाग वडेरे जन हर हर शरदार प्यास। हर हर नाम मिलै तृपता सै मिल संगत गुण प्रगास। जन हर हर हर रस नाम न पाया ते पागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिख्या लिखास।

हरिया पे ठाकुर हरिया पे सेवक जी क्या नानक जंत बिचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हरे को बुरख समाण।

पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाना। जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाना। हर त्याव है तुद जी से जन युग में सुखवासी।

तेरी अनक करहे हर पूजा जी, तप तप है जप है बेअंता, तेरे अनेक पढ़ है मोसमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख परम पुर करता जी, तुद जीवड़ वरना कोई।

तड़ुबियले मान एक न चेतस मूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाउ ना हो जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक दिन की शरण जिन तू नाही विसरया आस्था महला पंजवा पई परापत मानु

केवल नाम। सरंजा मिलाग भव जल तरन कै, जन्म मृथा जात रंग माया कह राउ। जप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साधना जा

पातशाही दसवीं कव्यो बाज बेनती चौपई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जा

जिसमें घरे आए, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ, सेवक सेख हमारे तारी है, चुन चुन सतर हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे अभर आए, मरण काल का त्रास निवर आए।

सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाई ब्रह्मा बपतरा, काल पाई सब जुग अवतरा, काल पाई कर विषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी सब की ओ

जबन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तसी को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी, सेवकन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को बल मोबद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछानै, कट कट के पट पट की जानै, जा बुद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब दी अपारा, जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझो चारे, तुम सब ही तेरे तन रालम, जानत भेद भेद अर आलम।

अंडज जेरज सिद्ध किन्नी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सगरी।

दुखता वै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट नह आए हैं रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट डरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि नहरो ताके ताप तन कमो हरिओ रिद सिद्ध करमो सब होई दुष्ट शास्व सक न कोई।

सवैया पाए कहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने सिमरत

सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माही सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज से ती मन भजिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गा बने आईया शब्दों तां गावो हरि के राम मन जनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया

ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो।

रहाओ दूजा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सोहिला राग गौड़ जी की महला पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद जय कर कीर्ता की है करते कहो विचार। हित कर गावहु सुहिला सिमरिउ सो जनहार। तुम गावो मर मेर पौ का सुहिला हूँ वारी सुहिला है सदा सुख विराव। नित नित जीवन समालियन देख करे बनहार। तेरा गन कीमत ना पवे तिसदा ती कबड़ सुमार। संबत सह लिखिया मिल कर पावो तेल देह सजना सीसड़ियाँ जो हो वै सहब समेल। कर करे हो पहुंचा सदड़े न तपवानो सदन हारा सिमरिया नानक से दे अवानो।

0: दुख निर्दोष ते वर्ति तूड़े हारी माया सिख निर्दोष ते वर्ति तूड़े हारी माया सिख निर्दोष ते वर्ति तूड़े हारी।
1: मेरे साहब जी की पावन बाणी का फरमान है, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। जदों तक मैं दा वासा है उस बर्तन के अंदर अमृत नहीं पै सकता जिथे हम है। ताकि अज जेड़ा गुरसिख सतगुरां दे कोल रहिंदिया बाणी पढ़ के इन्हां शब्दां दा उच्चारण करदा सी, हम मैं नावै नाल विरोध है दोए ना वसै इक ठाए। अज इसे दी गचाया, अज इसे दी लपेट विच आया, हमें दा शिकार हो गया। तुरिया जांदा घोड़े ते सवार,

पंथ सजा चिड़िया तो बाजत रोने ने जुल्म बरुद मैदाने जंग विच जा खड़कौने ने जुल्म बरुद मैदाने जंग विच जा।

आना करके निशाना हरी कंध दा आना करके निशाना हरी कंध दा ओदी दित्ती होश पला मार के ती।

लाही नहीं तू ता मेरा बेटा है। गलत बेटे नू हर बाप बख्शदा आया, गलत बेटे

होशे आउंदी सब नू जद कोई ठोकर लग जांदी तू ता भुल के सिद्धा मुड़ है कर लू तू ता अमर हो गयो महासिंगा इस दुनिया से जल्दी फंद मिटा के ते मंजिल नू पाया जल्दी

पंजाब दी धरती ते उगण वाली हर सरगी हुण मलकीयत दी आवाज दी उंगली फड़ के जवानी वल वधदी है। मलकीयत दी गायकी पंजाबी गायकी दा अज है। मलकीयत दी गायकी पंजाबी गायकी दा धन भाग है। मलकीयत दी गायकी पंजाबी गायकी दा असली मुहांदरा है। इसलिए अज मलकीयत दी गायकी ने पंजाबी गायकी दे खेतर विच ते लोकां दिया दिलां विच एक वक्री ते सुरक्षित थां बना ली है। अज दुनिया के हर मुल्क के हर छोटे वड्डे शहर विच जिथे किते पंजाबी वसदे ने ओ मलकीयत नूं हर रोज ते कई कई वार सुनदे ने। क्यों जो अज मलकीयत दी गायकी पंजाबियां दा सुभाव बन चुकी है। अज पूरी पंजाबी कौम लई ओ सुलखनी घड़ी आ गई है जिसकी उड़ीक ओ कई चिरां तों कर रही थी। अज मलकीयत अपनी सुरीली ते रसीली आवाज विच धार्मिक गीत पेश करके पंजाबियां दे दिलां विच सिदक कुरबानी ते शरदा दे जज्बे नूं जगाण अते पंजाबी गायकी दी आत्मा नूं होर सुच्चा करन लई कैसेट पेश करन दा मान प्राप्त करदा है। असीं यूके दे गोल्डन स्टार ग्रुप दे दिलों धन्नवादी हां जिस सदका मलकीयत दी गायकी दा बूटा हर पंजाबी वेहड़े विच संगीत नाल पिछियां छावां वंड रहा है। इन्हां गीतां विच मिठास रस ते जोश भरिया है। वीर रहीम पुरी ने अते संगीत नाल सजाया है संगीतकार HM सिंह ने। लो पेश है मलकीयत दे धार्मिक गीतां दा कैसेट चोट नगारे लावो चोट नगारे लावो चोट नगारे लावो।

है बोल इलाही बोल जो मुखो बोल गया जपोस गुरु दी बाणी जेड़ा बैठे मोती खाने च तेरा ही तेरा तोड़ गया तेरा ही तेरा

पात नू किया मटा के कूड़ दा पर्दा किया हटा के जात पात नू किया मटा के कूड़ दा पर्दा किया हटा के जो

चलते थे चलते लिख के स्नेहा अच्छी मौत बन खलते लिख के स्नेहा अच्छी मौत बन खलते मौत भारी कौड़ी हंसवी।

सभी प्रदान करें। जिन्हें चले नित्य सत्य चले तार का लख परोए मुकाम ओही एक है नानक का सच बगोए। बगोए मैं कह रहा सच बगोए मैं सच कह रहा गुरु नानक नानक का सच बगोए मैं सच कह रहा कि महाराज जी कहें सारा ब्रह्मांड चल रहा है सब कुछ चल रहा है सूरज चल रहा है चंद्रमा चल रहा है

बोलना तीर्थ दान दयादत संजम एक बिना न एक पछाने पूर्ण जोत जगे घट में सब खालिस ताहे न खालिस जाने जप दिया स्टेज आदियां स्कूल पे एक है गुरु कलासा दस है सारे बच्चे एको सरकूले जा रहे हैं पर एक क्लास देखने सत्संग के सारे ने सारे की मानसिक स्टेज एक नहीं हो गई पता ही नहीं हुआ गुस्ताखी माँ हो सकता है कोई तिहाई क्लास भी करो दसवीं चो हो सकता है कोई अजय प्राइमरी चो एक नहीं हो अक्सर सत्संग मैं देखना शरीर पे बुजुर्ग हो गया है पर अजय भी प्राइमरी क्लासा च बैठे इन्हों के प्रश्न इन्हों का पूछना जब मेरे को प्रश्न कोई करता है एकदम ख्याल आ जाता है कि प्राइमरी दे भी पहली क्लास का विद्यार्थी कुछ भी कितनी मेहनत करते हैं और फिर सारी जिंदगी उठे ही बैठे जाते हैं पर सिलसिला नहीं है भारत के शहर खेल करने का बच्चा फिर उठे ही रहता है सन 47 में जब देश की वंड हुई ना तो दास जब अलवर पहुंचे अपने परिवार के ना माता पिता के ना उन्होंने मैंने स्कूल पाया पर क्योंकि सानू हिंदी संस्कृत नहीं आती थी राजस्थान दिया स्टेटा प्राइमरी स्कूल हिंदी संस्कृत पढ़ाते सन इतों शुरू हो सानू पहली क्लास से बिठाया 12 साल का हूं मैं तो छोटे बच्चों बैठ गया शर्म भी आए पर क्योंकि होर भी जेडे आए सन डिटो जी बच्चे बैठे सन तो मैं भी बैठ उठे मैं पता चलिया जेड़ा बच्चा 3 साल तक फेल हो जाए उदों स्टेट आसन महाराजे का नियम चलता अलवर का राज पेज अजे भी चलता जयपुर स्टेट की भरतपुर स्टेट की राजे महाराजे उन्हें एक नियम बना रखा कि 3 साल जेड़ा बच्चा फेल हो जाए ना फिर उन्होंने कढ़ दो दे स्कूल के दरवाजे बंद उन्होंने कहो वो माँ बाप ने कहो कोई होर काम सिखावे ये पढ़न जोगा नहीं एवं स्कूल का समा खराब कर रहा है मंत्र मन का समा खराब और बच्चों को गलत प्रेरणा देता है बंद कर दो दरवाजे जेड़ा 3 साल फेल हो जाए और सत्संग के स्कूल मैं देखे 80 साल के बूढ़े ने 50-60 साल तो फेल ही हो अगे वधन का ना ही नहीं लेंगे मैं समझ ऐसे बंदियां गुरुद्वार के दरवाजे बंद कर देने चाहिए ने इन्हों वेख के नास्तिकता बढ़ती है ये 50 साल तो जा रहे हैं झूठे का झूठा सानू की मिलना ये 50 साल का जा रहा है कठोर का कठोर सानू की मिलना ये 50 साल का जा रहा है बेईमान का बेईमान सानू की मिलना बच्चों को भी गलत पड़े ला मैनू कभी क्योंकि स्टेटा खत्म हो गई नियम होने पर नहीं है और राजस्थान की स्टेटा के नियम नहीं है 3 साल जोड़ा फेल हो गया उन्होंने कट दिया उदो पर इतने के नियम बने नहीं बेईमान है झूठ है परे भी है और शायद झूठ वास्ते ही गुरुद्वारे आंदा है बेईमानी करने वास्ते ही आंदा है अहंकार को बधाने वास्ते आंदे ये गलत प्रेरणा मिलती ये नौजवानों को भी गलत प्रेरणा ये बच्चों को भी गलत प्रेरणा है जप के नाल ये जमे होया मन जो पत्थर है पानी होगा जप की तपश नाल ही पास बनेगा बुलंदियां जमीन की कशिश तो कबर ऊपर उठ गई ये तुर हम दुनिया की कोई ताकत इसको थले नहीं लिया ये तन के टुकड़े से पीते जा सकते हैं सुरत के टुकड़े नहीं पीते जा सकते बंद बंद से कटे जा सकते हैं यू परमात्मा नालों नहीं तोड़िया जा सकता ये जुड़ गया ये तन तो उच्चा उठ गया संसार तो उच्चा उठ गया इन्हें के गगन मंडलों में सब लिया एक खालसा हो गया इतने ब्रह्म ज्ञानी हो गया इतने संत हो गया इतने पूर्ण पुरख हो गया

गुरु दे प्यारियां दी मन संगत बख्शो, संत जना मिल हर जस गाइए, कोट जन्म के डूब गवाओ। वाहिगुरु दा नाम जे संता महापुरुषां दी संगत विच गाया जावे तां करोड़ां ही जन्मां दा दुख जड़ा है उसकी निवृत्ति हो जाती है। साध जना की मांगो तूर, पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर, गुरु प्यारियां दी संगत विच मैनू रखो तां जो मेरे मन विच इच्छा है वाहिगुरु जी आप नू मिलन दी ओ पूरी हो जावे। सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम्हें त्याओ, मैं सदा आप जी का नाम जपदा रहा, स्वास स्वास आप जी का ही ध्यान करा। चरण कमल स्यों लागे प्रीत, भगत करो प्रभ के नित नीत, मन विच प्रेम श्रद्धा आ जावे, मन विच प्रतीति आ जावे, मन विच वाहिगुरु जी का नाम वस जावे, मन मंदर तन वेश कलंदर काटी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसता है बौड़ जन्म न आवा। वाहिगुरु जी मैं चाओ नाल भगती करा, नेता प्रति करा, स्वास स्वास करा, ऐसी

सुख होए। सौ नजर कर देखे सौ दिन देखे, प्रभु की दृष्टि महा सुख होए। हर रस पावे बिरला कोई, वाहिगुरु जी दे नाम दा रस, वाहिगुरु जी दे नाम दी प्रसन्नता, वाहिगुरु जी दी दृष्टि कोई बिरला ही जीव प्राप्त करदा है। जिन चाखिया से जन त्रपताने, वाहिगुरु दा नाम मिठा है, निग्गा है, प्यारा है, मुक्ति देन वाला है। इस वाहिगुरु दा नाम किसी विरले नहीं चख्या है। पूरन पुरख नहीं डोलन, वाहिगुरु की कृपा नाल जिन्हां दा मन अडोल हो गया वाहिगुरु दे नाम जाप नाल, ओ पूर्ण हो गए ते उन्हां गुरमुखां ने वाहिगुरु जी आप दे नाम दा रस चख्या है। सुबर परे प्रेम रस रंग, उपजे चाओ साध कै संग। ओ प्रेम नाल तेरे प्यारे नखा नक नाम दे रस विच रंगे पए ने, ते पाओ भावना प्रतीति दा चाओ उन्हां दे मन विच सतगुरु दी कृपा नाल आया है, सतगुरु दी आज्ञा विच रह के आया है। परे शरण आन सब त्याग, अंतर परगास अनदन लेव लाग। ओ गुरु के प्यारे जिन्हां अपने आप दा त्याग कीता हां तो रहत होए, ओ वाहिगुरु जी तुहाडी शरण विच आए हन, उन्हां दे मन विच वाहिगुरु दे नाम दा प्रकाश हो गया है। अनदिन निता प्रति दिन और रात उन्हां दी सुरत शब्द नूं पकड़ के वाहिगुरु दे नाम दे रस विच लीन हो गई है। बड़ भागी जपिया प्रभ सोई, नानक नाम रते सुख होए। गुरु साहिब फरमाउंदे ने वड्डियां भागां वालियां नहीं, वाहिगुरु जी आपदा नाम जपिया है ते नाम दे कारण ही उन्हां दे मन और तन नूं

सेवक की मनस्था पूरी पई, तेरे दासा की मनस्था पूरी हो गई। सेवका ने नाम जपया ते दर्शन पाके उना दी इच्छा पूरी हो गई। सतगुर ते इंद्र मल मत लई ए रहनी ए मत सतगुरु की कृपा नाल उना नू आई। उना नाम जपया ते नाम जप के हरी दा दर्शन पाया। जन को प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल। वाहिगुरु जी ने आप दया मेर की थी ते अपने दासा ते अपने सेवका ते ओ निहाल होए मेरा कीतिया। बंधन काट मुक्त जन भया आ जन्म मरण दुख परम गया। वाहिगुरु जी जिन्हां दे मन विच आवसे उन्हां दे बंधन कटे गए मुक्ति पद प्राप्त होया ते अयो वाहिगुरु दी कृपा नाल ओ मनुख जन्म मरण दे दुख तों वखरा हो गया। इच पुन्नी सरदा सब पूरी राव रहा सद संग हजूरी। सारियां इच्छावां पूरियां हो गईयां श्रद्धा युक्त हो गया वाहिगुरु जी नो अंग संग जानिया। जिसका साथ तिन लिया मिलाए असी वाहिगुरु दे बच्चे हां वाहिगुरु जी तो बनाए हुए हां। वाहिगुरु जी ने ही सानू इस मनुष्य जन्म च भेजिया है। वाहिगुरु ने कृपा की अपना नाम जपाया ते आप कृपा करके सानू अपना दर्शन दिता ते सोझी बख्शी। नानक भगती नाम समाए इउ प्रेमा भगती करदिया जीव आत्मा विच स्थिर होके परमात्मा दा

माए उपजी प्रेत प्रेम रस चाओ भागा वालिया मनुखा दे अंदर वाहिगुरु दी प्रीत उत्पन्न हुंदी है कि प्रेम रस चाओ नाल वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु दा नाम जपदे हन। मन तन अंतर एही सवाओ उना दे मन विच एही नाम दे जपण दा चाओ चढ़िया है। नेत्रों पेख दर्श सुख होए मन दी अख खुल जावे ते वाहिगुरु जी दा दर्शन हुंदा है। वाहिगुरु जी दा दर्शन मन दे अंदरों ही हुंदा है। जिवें देही च मन रहिंदा है मन विच इसी तरह वाहिगुरु जी आप रहिंदे हन। मन दे नेत्र खुलण नाल वाहिगुरु दा दर्शन हुंदा है ते महान सुख दी प्राप्ति हुंदी है। नेत्रों पेख दर्श सुख होए मन बिगसे साध चरण तोए। मन खिड़ जांदा है वाहिगुरु जी दे दर्शन कीतिया ते सतगुरां दे चरणां विच वाहिगुरु नाम कारण प्रतीति हो आमदी है। भगत जना के मन तन रंग बिरला को पावे संग। भगती करन वालियां प्रेमियां दे मन और तन विच वाहिगुरु दे नाम दी रंगना हुंदी है ते कोई विरला ही नाम जप के वाहिगुरु दे संग नूं प्राप्त करदा है वाहिगुरु जी दे।

ही वाहिगुरु जी आप दया मेर करके सानू भगती भावना बख्शो जी। गुर प्रसाद नाम जप लिया ताकि गुरु दी आग्या विच रह के गुरु दी शिक्षा ले के गुरु नू मन तन दे के असी वाहिगुरु जी दा नाम जप लईए।

जह निर्मल पुरख पुरख पत होता जदो वाहिगुरु जी अपने आप विच ही पूर्ण सन आत्मा करके जिया चित सन तदो दसो ए जी मैला किवे होया इस दी मैल किवे धोती जांदी सी। जै निरंजन निरंकार निर्वाण तैं कौन को मान कौन अभमान। जदो वाहिगुरु जी आप ही ज्योति स्वरूप सन निराकार सन हाँ तो रहत सन फिर मान और अपमान किस

कवन त्रिपतावे जदों वाहिगुरु अपने आप विच ही जोत स्वरूपा सी ते हर जियां दे कोले लागी होके अपने आप विच स्थित सी तां दसो ए जीव नूं भुख किवें लगदी सी ते कौन भुख दे कारण तृप्त विच हुंदा सी। करण करावण करणे हार नानक करते का नाही सुमार। गुरु साहिब फरमाउंदे ने आप ही वाहिगुरु करता पुरुष ने आप ही करावण हारे ने नानक करते का नाही सुमार। ओ आप बेअंत शक्तियां दे मालिक ने आप बेअंत स्वरूपा हन। जब अपनी

आप वाहेगुरु जी दे अपने ही कौतक हन ते अपने कौतकां नूं आप ही वेख के आश्चर्य होंदे हन। नानक अपनी गत जानो आप, अपने दर कर दी मर्यादा वाहेगुरु जी आप।

नानक आपस को आपे पाहूचा जै अछल अछेद अपेद समाया ऊहा किसे व्यापक माया। हजूर कहंदे हन जिथे वाहिगुरु जी आप छल रह तहन नास रह तहन भेद रह होके समाये हुए हन उथे दसो माया किसनु व्यापेगी। आप उसको आपे आदेश दे गुण का नाही परवेश जिथे अपने आविच आप ही वाहिगुरु जी हन उथे त्रै गुणी माया दा परवेश किवें हो सकदा है। जै एक है एक एक भगवंता तैं कौन अचिंत किस लागे चिंता। जिथे वाहिगुरु जी आप ही मेरा दे साई पूर्ण हन उथे दसो चिंता विच कौन है ते चिंता तो मुक्त कौन है। जै आपने आप आप पतियारा तैं कौन कथे कौन सुनने हारा। जिथे वाहिगुरु जी आप ही अपने आप नो समझाउन वाले होण तां दसो वाहिगुरु जी दी कथा कौन सुनेगा ते

जीव परम च पट गया ते कर्मा दा पार उसके सिर ते हो गया। दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखान, कर्मा दे अनुसार दुख और सुख की प्राप्ति होगी। जीव मान और अपमान विच विचरण लग पिया, होर अनेक ही प्रकार दे वख

अथा अगणत अतोले ज्यों बुलाओ क्यों नानक दास बोले जय अभिगत। भगत तैं आप जिसके प्रभु आप अविनाशी है सदा रहने वाला है उठे उसकी भगति है। जय पसरे पासार संत परताप जिथे जगत का पसारा है उथे संत सतगुरु पूर्ण रूप विच सर्व शक्तिमान ते वड्डे प्रताप वाले हुंदे हन। दो पाका आपे तनी उनकी शोभा उनहू बनी। दोना पखां दा जीव और आत्मा दा मालिक वाहिगुरु जी आप है ते जीव और आत्मा नु जिन्ना भी मान शोभा बनिया है ओ वाहिगुरु जी दे अपने हुक्म दे नीचे है। आपे कौतक करे अनचोग आपे रस भोगन निर्जोग। हजूर ने आपे ही कौतक बनाए ने ते आप ही ओदे विच आनंद मगन है। आपे रस भोगन निर्जोग आपे ही रसा दा भोग करदा है ते आपे ही ओ निर्वैर हो जांदा है। जिस भावे तिस आपन नाए लावे जिस भावे तिस खेल खिलावे। जिस दया मेर करदा है उनू अपने नाम की दात बख्शदा है ते जिस नू चाहुंदा है उनू संसार दे कौतकां विच माया दे विस्तार विच लाई रखदा है। बेसुमार अथा अगणत अतोले वाहिगुरु जी बेअंत हन अथा हन अथा नहीं पाया जा सकता। अगणत गिनती तो परे हन ते अतोल हन मुल नहीं पाया जा सकता। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले जिवें वाहिगुरु जी बल बख्शदे हन तिवें ही जीव बल वाला होके वाहिगुरु जी दी उस्तत

जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार। गुरु साहिब फरमाउंदे ने जिया अंदर वर्तन वाला आप जो मालक है ओ जिया विच वर्तन हारा भी है ते जिया दा आप मालक भी है। नानक एको पसरिया दूजा कै दृष्टार। गुरु साहिब फरमाउंदे ने एक वाहिगुरु ही बेअंत स्वरूप होके सब जिया विच पसरिया होया है, वर्त रहा है, दूजा कोई मेरी दृष्टि विच नहीं है। अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार। वाहिगुरु जी आप ही अकथनिया हन, आप ही अपना प्रवचन करते हैं वाणी राही, ते आप ही सुन वाले हन। आपे एक आप विस्तार, आपे एक रस हन, आपे

देवता है, ये स्त्री नहीं है, ये देवी है। कहते सहजे सहजे पारिवारिक जीवन भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया, कोख मैली हो गई। कोख के मैले होंगे भूतां प्रेतां के जन्म होने शुरू होए। मैं अपनी जबान नाल लाख हाँ धन गुरु नानक के बोल पड़े सामने कंधी अंदर नानका जिन्ना दा अवतार पुत जनोरा ही जनोरी जोरू जिन्ना दा सिकरा पुत पैदा हो रहा है जिन बहुत ही पैदा हो रही है जिन बहुत पहला है पुत पहली है कंधी अंदर इस दौर दे कंधी अंदर नानका जिन्ना का अवतार जो अवतार ले रहे हैं अवतरित हो रहे हैं जन्म ले रहे हैं जिन बोध मेरे पुत्र ही जिन बोध नहीं पुत्र जनऊरा ही जनऊरी ही भी जिन बोध यह भी पुत्र कह रहे हैं। सवाल पैदा होता है क्यों इन भी गुरु नानक खोल रहे हैं रन्ना होइया बोधियां पुरख होए सैया। मैं जो पहला इस कर रहे हैं मैं गृहस्थी बंदा इस पर थानू गुरु नानक की बाणी सुना रहे कोशिश है मेरी अर्थां तो इधर उधर भी ना हो रन्ना होइया बोधियां बोधियां चंचल अत्यंत चंचल शरीर की नुमाइश करनी है शरीर की प्रदर्शनी करनी है रन्ना होइया बोधियां पुरख होए सयाद सयाद लवत फारसी रहे ते पुरख शिकारी होए फिर दिन देखना चाहे नगनता देखना चाहे स्त्री नगन होना चाहे यौरव अर्धे तो ज्यादा नगन हो गए एशिया के बहुते देश अर्धे तो ज्यादा स्त्रियां नगन हो गए अर्ध नगन तन की नुमाइश करनी है प्रदर्शनी करनी है शरीर की नुमाइश करनी है प्रदर्शनी करनी है रन्ना होइया बोधियां पुरख होए सैया जे पुरख ने ये शिकारी सैया सील संजम सुच बनी सील आचरण आचरण किसनों कहते हैं पति पत्नी के संबंध नहीं रहे गनका के दुराचारी के संबंध पुस्तासी बात सील संयम सुच भन्नी खाना खाल अखाल शर्म गई घर आपने पथ पथ उठ चली नाल नानक सच्चा एक है अवर न सच्चा ਉਹ ਬੋਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਧਰੂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਿਓ ਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ ਪਰ ਮਾਂ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ ਬੋਧ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰੂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦੋਂ ਹੋਈਏ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜੋ जब तब कर दी थी सालिना कर दी मनी सिंह भाई गुरदास एवं नहीं पैदा होंगे कोख बड़ी पवित्र होंगे गंदे नावल पढ़ के गंदिया फिल्म देख के जो दिन भर गंदे विचारा रखते हैं ऐसिया माताव लैला मजनू कातलों के चोरों जन्म दे सकदियां ने भगतां ने कली अंदर नानका जिन्ना का अवतार पुत जनूरा दिली जनूरी जोरू जिन्ना का सिगरा। मैं आप बेटी सुनाना उन्होंने सारे गुणी ज्ञानियों राजीव सिंह पता है माता कानपुर मेरे को 13 साल का बच्चा लिया कह लगे पहले इतने बंदे चल रहे हैं इन्हों भी रख लो

सच्चा शब्द पतार है सदा सदा रावे। ज्यो उबली मजीठ है रंग गहगा त्यों सच्चे नो जियो दे। रंग चलू ले अतरती सच्चे स्यों लगा ने हो। कूर ठगी गुजी ना रह कूर मुलम्मा प्लेट तरे हो। कूड़ी करन वडाया कूड़े स्यों लगा ने हो। नानक सच्चा आप है आपे नदर करे। महला चौथा सत संगत में हर उस्तत है संग साधु मिले प्यारिया। ओए पुरख प्राणी तन जन है उपदेश करें पर उपकारिया। हर नाम दृढ़ावे हर नाम सुनावे हर नामे जग निस्तारिया। गुर वेखण को सब कोई लोचे नव खंड जगत नमस्कारिया। तुद आपे आप रखिया सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया। तू आपे पूजे पूज करावे सतगुर को सिरजन हारिया। कोई विछड़ जाए सतगुरु पासों तिस काला मोह जम मारिया। तिस अग्गे पिछे टोई नाहीं गुर सिखी मन विचारिया। सतगुरु नो मिले सही जन उबरे जिन हृदय नाम समारिया। जन नानक के गुर सिख पुतो हर जप्यो हर निस्तारिया। महला तीजा हौ मैं जगत पुलाया दुर्मत बिखिया विकार। सतगुर मिले ता नदर होए मनमुख अंध अंधियार। नानक आपे मेल ले जिसनो शब्द लाए प्यार। पौड़ी सच सच्चे की सिफत सलाह है सो करे जिस अंदर पिजे। जिन्नी एक मन एक अरादिया तिनका कंध ना कबहू छिजे। तन तन पुरख सवास है जिन सच रसना अमृत पिजे। सच सच्चा जिन मन पामदा से मन सच्ची दरगह लिजे। तन तन जन्म सचियारिया मुख उज्जल सच करिजे। श्लोक महला चौथा साकत जाए निवै गुर आ गए। मन खोटे कूड़ कूड़ियारे जा गुर कह उठो मेरे पाई। बह जाए कुकर बगुलारे गुर सिखा अंदर सतगुर वरते। चुन कड्डे लद्दो वारे ओए अग्गे पिछे बह मोछ पाए ना रलनी खोटे आरे। ओना दा पख सो ओचे नाही जाए कूर लहन पेड़ारे। जे साकत न रखावाई है लोचिए बिख कड्डे मुख उगलारे। हर साकत सेती संग न करियो ओए मारे सिरजन हारे। जिसका यो खेल सोई कर वेखे जन नानक नाम समारे। महला चौथा सतगुर पुरख अगम है जिस अंदर हर उर्धारिया। सतगुरु नो अपड़ कोई ना सके जिस वल सिरजन हारिया। सतगुरु का खड़क संजो हर भगत है जित काल कंटक मार विडारिया। सतगुरु का रखन हारा हर आप है सतगुरु के पिछे हर सब उबारिया। जो मंदा चित में पूरे सतगुरु का सो आप उपावन हारे मारिया। एक गल हो वे हर दरगे सच्चे की जन नानक अगम विचारिया। पौड़ी सच सुत्या जिन्नी आराध्या जा उठे ता सच चवे। ते विरले जुग में जानिए जो गुरमुख सच रवे। हौ बलिहारी तिन को जे अंदिन सच लवे। जिन मंतन सच्चा पामदा से सच्ची दरगे गवे। जन नानक बोले सच नाम सच सच्चा सदा नवे। श्लोक महला चौथा क्या सवना क्या जागना गुरमुख ते परवान। जिना सास गिरास ना विसर।

सिधाए सतगुर चेती मन रता रखिया बनत बनाए जिहवा साला है ना रजई हर प्रीतम चित लाए नानक नावे की मन पुख है मन तृप्त है हर रस खाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाया सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याईया सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने न पाया जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजिर नदरी आईया सच गुरमुख जिनी सलाहिया तिना भुखा सब गवाईया श्लोक महला चौथा मैं मन तन खोज खोजेंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़ विश्व गुरु मैं पाया जिन हर प्रभ दिता जोड़ महला तीजा माया तारी अपना बोला शब्द ना सुनई बहु रोल कचोला गुरमुख जापे शब्द लिव लाए हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए जो तिस पावे सो करे कराया नानक वजदा जंत वजाया पौड़ी तू करता सब किस जानदा जो जिया अंदर वरत तू करता आप अगणत है सब जग विच गणत है सब कीता तेरा वरतदा सब तेरी बनत है तू घट घट इक वरतदा सच साहिब चलते सतगुरु नो मिले तो हर मिले ना ही किसे परत है श्लोक महला चौथा एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है गुरमुख लाई है चित क्यों सास गिरास विसारी है बहनदिया उठदिया नित मरण जीवन की चिंता गई इहो जीड़ा हर प्रभ वस ज्यों पावे त्यों रख तू जन नानक नाम बख्श महला तीजा मनमुख अहंकारी महल न जाने किन आगे किन पीछे सदा बुलाइए महल न आवे क्यों कर दरगे सीजे सतगुर का महल विरला जाने सदा रह कर जोड़ अपनी कृपा

ने जा सतगुरु का मन मन्या ता पाप कसम मल पन्ने उपदेश जे दित्ता सतगुरु सो सुनिया सिखी कन्ने।

कारण कारण समरथ पौड़ी पंजवा ले साहे राती तुरह प्रभ जाने प्राणी तके नार पराया लुक अंदर ठाणी सन्नी देन विखम ठाए मिठा मदमानी करमी आपो आपनी आपे पछतानी अजराइल फिरस्ता तिन पीड़े कानी श्लोक महला पंजवा सेवक सच्चे साह के सेई परवान दूजा सेवन नानका से पच पच मोए अजान।

ओ नानक सदा ते आए। पौड़ी पंजवा नारायण लया न ठूंगड़ा, पैर किथे रखे करदा पाप अमित्या, नित विखो चखे निंदा करदा पचमुआ, विच देही पखे सच्चे साहिब मारिया, कौन किसनो रखे नानक तिस शरणागति जो पुरख अलख है। श्लोक महला पंजवा। नरक कोर बहु दुख कणे, अकिर्त कणा का खान, तिन प्रभ मारे नानका, होए होए मोए हराम। महला पंजवा। अवखद सभ्य कीतियन, निंदक का दारू नाहे, आप पुलाए नानका, पच पच जोनी पाहे। पौड़ी पंजवा। तुस दिता पूरे सतगुरु, हर तन सच अखुट, सब अंगे से मिट गए जम का पौ छुट, काम क्रोध बुरियाया संग साधु टुट, विण सच्चे दूजा सेम दे होए मरसन बुट, नानक कौ गुर बख्शिया नामे संग जुट। श्लोक महला चौथा। तपा न होवे अंदरों, लोभी नित माया नो फिरे जज मालिया, अगों दे सदिया सत्ते दी पिख्या ले, नाही पिछों दे पछताए कै आन कपे पुत विच बहा लिया। पंच लोग सब हसन लगे, तपा लोभ

पाई एवो तपाना होवी बगुला है बह साध जना विचारिया। सत पुरख की तपा निंदा करे संसार है की उत्पत्ति विच होवे एक दुख है तपा दे मारिया। महापुरखा की निंदा का वेख जे तपे नो फल लगा सब गया तपे का कालिया। बाहर बह पंचामित तपा सदाए अंदर बह तपा पाप कमाए। हर अंदरला पाप पंचानो उगा कर वे खा लिया। धर्म राय जम कंकरा नो आख छड़िया इस तपे नो तिथे खड़ पायो जिथे महा महा त्यारिया। फिर इस तपे दे मुहे कोई लगो नाही इहो सतगुर है फिटकारिया। हर कै दर वरतिया सो नानक आप सुनाया सो बूझे जो दै सवारिया सो बूझे जो दै सवारिया। महला चौथा हर भगता हर आराध्या हर की वडियाई हर कीर्तन भगत नित गाव दे हर नाम सुखदाई। हर भगता नो नित नावे दी वडियाई बखियन नित चढ़े सवाई। हर भगता नो थिर करी बहालियन अपनी पैज रखाई। निंदका पासों हर लेखा मंगसी बहु दे सजाई जेहा निंदक अपने जिए कमाव दे ते हो फल पाई। अंदर कमाना सर पर उगड़े पावे कोई बह धरती विच कमाई। जन नानक देख विचया हर की वड्याई। पौड़ी महला पंजवा भगत जना का राखा हर आप है क्या पापी करिए गुमान करे मूड गुमानिया। विस्खा दी मरिए आए लगे नी दे थोड़े।

मन मुख मूलो पुल्या विच लभ लोभ अहंकार झगड़ा करद्या अंधिन कुदरै शब्द ना करें विचार शुद्ध मत करते सब हिरलई बोलन सब विकार जिते किते ना संतोखिए अंतर तिसना बहु अज्ञान अंधियार नानक मन मुखा नालों तुटी पली जिन माया मोह प्यार महला चौथा जिना अंदर दूजा पाओ है तिना गुरमुख प्रीत ना होए ओह आवे जाए पवाई है सुपने सुख ना कोए कूड़ कमावे कूड़ उचरे कूड़ लगिया कूड़ होए माया मोह सब दुख है दुख बिन से दुख रोए नानक तात लिवे जोड़ ना आवई जे लोचे सब कोए जिनको पोते पुन पया तिना गुर सब दी सुख होए पौड़ी महला पंजवा नानक विचार है संत मुन जना चार वेद कहंदे भगत मुखे ते बोल दे से वचन हो वंदे प्रगट पहार है जाप दे सब लोग सुनन दे सुख न पाएन मुग्ध नर संत नाल खांदे ओ लोचन ओ ना

वैर करन निर्वैर नाल धर्म न्याय पचंदे जो जो संत सरापिया से फिरे पवंदे तेड मुंडा हूं कटिया तिस डाल सुकंदे। श्लोक महला पंजवा। गुरु नानक हर नाम दृढ़ाया पन्नन करण समरथ प्रभ सदा समाले मित्र तू दुख सबाया लथ। महला पंजवा। खुदयावंत ना जानई लाज कुलाज कुबोल नानक मांगे

संगय पलते कच गलावा चालिया तिन दूत अमलते काई आस न पुनिया नित परमल हिरते किया ना जाने।

चढ़ सरती पढ़ते श्लोक महला तीजा। गुरुमुख ज्ञान विवेक बुद्ध होए, हर गुण गावे हृदय हार परोए। पवित्र पावन परम विचारी, जे उस मिले तिस पार उतारी। अंतर हर नाम वासना समानी, हर दर शोभा महा उत्तम बाणी। जे पुरुष सुने

सतगुर आखे सो कार कमावन, सो जप कमावे गुर सिखा की काल सच्चा थाए पावे। वे सतगुर के हुक्मे जे गुर सिखा पासों कम कराया लोड़े, तिस गुर सिख फिर नेड़ न

तिस नेड़े गुर तिस मूल ना आवे, ब्रह्म विचार नानक आप सुनावे। जे बिन सतगुर के मन मने काम कराए, सो जंत महा दुख पावे। पौड़ी तू सच्चा साहिब।

आप मिलाएगा तो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े तू सच्चा साहेब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे ज्यों पावे त्यों रख तू सच्चा नानक मन आस तेरे।

हर हर नाम जो जन जपै सो आया परवान, तिस जन के बलिहारण जिन पजिया प्रभ निर्वाण, जन्म मरण दुख कटिया हर पेटिया पुरख सुजान, संत संग सागर।

मन तन नित पावो, नाम सुने नाम संग्रह नामे लिव लावो, गृह तन सब पवित्र होए, हर के गुण गावो, हर नाम व्यापारी नानका वड पागी पावो। पौड़ी जो तुद पावे सो पला, सच तेरा पाना, तू सब में एक वर्तदा सब माहे समाना, थाम सनंतर रव रहा जी अंदर जाना, साध संग मिल पाये मन सच्चे पाना, नानक प्रभ शरणागति सद सद कुर्बाना। श्लोक महला पंजवा। चेताई ता चेत साहिब सच्चा सोतनी, नानक सतगुर सेव चढ़ बोहित पौ जल पार पौ। महला पंजवा। वाऊ संदे कपड़े पहने गर्भ गवार, ना

भी है हर अमृत चखे, काम क्रोध लोभ मोह संग सादा पक्के, कर कृपा प्रभ अपनी हर आप परखे, नानक चलत ना जापनी को सके न लखे। श्लोक महला पंजवा। नानक सोई दिन सुहावड़ा, जित प्रभ आवे चित, जित दिन विसरे पार ब्रह्म, फिट पलेरी रुत। महला पंजवा। नानक मित्राई तिस क्यों, सब किछ जिस कह।

जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर पुख रह न काई, सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई, तुद जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक शरणाई। श्लोक महला पंजवा, डिठड़ो हब ठाए ऊन न काई जाए, नानक लद्दा तिन सुआओ जिना सतगुर पेटिया। महला पंजवा, दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग के, वस सुहावी साए नानक नाउ जपंदो तिस्तनी पौड़ी। सिमरत शास्त्र सोद सब किने कीव न जानी, जो जन पेटे साध संग सो हर रंग माणी, सच नाम करता पुरख ए रतना खानी, मस्तक होवे लिखिया हर सिमर पराणी, तोसा दिच्चे सच नाम नानक मेहमानी। श्लोक महला पंजवा, अंतर चिंता नैनी सुखी मूल न उतरे पुख, नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथो दुख। महला पंजवा, मुठड़े से साथ जिन्नी सच न लद्या, नानक से साबास जिन्नी गुरमिल इक पछाणिया पौड़ी। जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा, ओए सेवन समरत अपना दिन से सब मंदा, पतित उदाहरण पार ब्रह्म संत वेद कहंदा, भगत वत्सल तेरा बिरद है जुग जुग वर्तंदा, नानक जाचे एक नाम मन तन पावंदा। श्लोक महला पंजवा, चिड़ी चौकी पौ फुटी बगन बहुत तरंग, अचरज रूप संतन रचे नानक नामे रंग। महला पंजवा, तार मंदर खुशियां कही जै तू आवे चित, दुनिया किया वडियाया नानक सब को मित पौड़ी। हर तन सच्ची रास है किने विर ले जाता, किसे प्राप्त पायर हो जिस दे विदाता, मन तन पीतर मौलिया हर रंग जन राता, साध संग गुण गाया सब दुखे खाता, नानक सोई जीविया जिन इक पछाता।

नानक सह सह गंत मेला पंजवा विसारे दे मर गए मर भी न सके मूल वेमुख हुए राम ते ज्यों तस्तर ऊपर सूल पौड़ी सुख निधान प्रभ एक है अविनाशी सुनिया जल थल मैयल पूरिया कट कट हर पनिया ऊंच नीच सब एक समान कीट हस्ती बनिया मीत सखा सुत बंद पो सब तिस दे जनिया तुस नानक देवै।

तन से ते नानका पूरन सोई संत। महला पंजवा अठे पैर पौंदा फिरे खावन संदड़े सूल।

अतुल भंडारिया, नानक शब्द अपार तिन सब किछ सारिया। महला पंजवा, सिखो शब्द प्यारे हो, जन्म मरण की टेक, मुख उजल सदा सुखी, नानक सिमरत एक पौड़ी। ओथे अमृत वंडी है सुखिया हर करने, जम के पंथ न पाइए फिर ना ही मरने, जिसनो आया प्रेम रस से ही जरने, बाणी उचरे साध जन अम्यो चले चरने, पेट दर्शन नानक जीव्या मन अंदर करने। श्लोक महला पंजवा, सतगुर पूरे सेवे दुखा का होए नाश, नानक नाम आराध्य कारज आवे रास। महला पंजवा, जिस सिमरत संकट छुटे अनद मंगल विश्राम, नानक जपिए सदा हर

ददा गुण गावे अविनाशी है जोन गर्भ ना ददा गुर पेटिया पार ब्रह्म हर पर बुझ समदा नानक पाया सो तनी हर अगम अगदा। श्लोक महला पंजवा काम ना करही आपना फिरे अवता लोए नानक नाए विसारे सुख किनेहा होए। महला पंजवा बिखे कौरतन सगल माहे जगत रही लपताए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाओ। पौड़ी ए निशानी साधकी जिस पे तत करिए जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बौड़ ना मरिए पव सागर संसार बिख सो पार उतरिए हर गुण गुंफो मन माल हर सब मल पर हरिए नानक प्रीतम मिल रहे पार ब्रह्म नर हरिए। श्लोक महला पंजवा नानक आए से परवान है जिन हर उठा चित गाली अल पला लिया कम न आवे मित। महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूरन अगम विस्माद नानक राम नाम तन कीता पूरे गुरु प्रसाद। पौड़ी तो वो ना चली खसम नाल लब मोहे विगुते करतब करन पलेरिया मद माया सुते फिर जून पवायन जम मार्ग मुते कीता पायन आपना।

मन तन शीतल होए। महला पंजवा लालच अटिया नित फिरे स्वार्थ करे न कोए जिस गुर पेटे नानका तिस मन वसिया सोए। पौड़ी सबे वस्तु कौड़िया सच्चे नाव मिठा साध आया तिन हर जना चक्षा दी विठा पार ब्रह्म जिस लिखिया मन तिसे उठा एक निरंजन रव रहा पाव दोया कुठा हर नानक मंगे।

आदर पदरो पौड़ी सोई सेव्यो जीअड़े दाता बख्शिंद किलविक सब विनाश होन सिमरत गोविंद हर मार्ग साधु दसिया जपिए गुरमंत माया स्वाद सब फिकिया।

नेचल एक श्रेविया होर सब विनाश, पार ब्रह्म जिस विसरै तिस बिरथा सास, कंठ लाए जन रखिया नानक बल जास। श्लोक महला पंजवा। पार ब्रह्म फुरमाया मियो उठा सहज सुवाए, अन तन बहुत उपजिया पृथ्वी रज्जी तिपत अघाए, सदा सदा गुण उचरै दुख दालद गया बिलाए, पूरब लिखिया पाया मिलिया तिसहर जाए, परमेश्वर जी वालिया नानक तिसह त्याए। महला पंजवा। जीवन पद निर्वाण इको

कोई जन रंग रूप रस बाद के करें प्राणिया जिस पुलाए आप तिस कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावही नानक शरण द्वार जे तुद पावही पौड़ी जम्मन मरण ना तिन को जो हर लड़ लागे जीवक से परवान होए हर कीर्तन जागे साध संग जिन पाया से ही वड़ पागे नाए विसरे त्रिग जीवना टूटे कष्टागे नानक तूर पुनीत साध लख कोट पिरागे श्लोक महला पंजवा तरण सुवली खर रतन जड़ावी हर प्रेम पुरख मन उठा सबे काज सुहेलड़े थिए गुरु नानक सतगुर तुठा महला पंजवा फिरदी दह दिशा जल पर्वत बन राए जिथे डिठा मृत को इल बैठी आए पौड़ी जिस सर्व सुखा फल लोड़िए सो सच कमावो नेड़े देखो पार ब्रह्म इक नाम ते आवो ओए सगल की रेण का हर संग समावो दुख न दे किसे जी पत क्यों कर जावो पतित पुनीत करता पुरख नानक सुनावो श्लोक दोहा महला पंजवा एक जे साजन मैं किया सर्व कला समरथ जियो हमारा खनी है हर मंथन संदड़ी वत महला पंजवा जे कर गए प्यारड़े तुद ना छोड़ा मूल हर छोड़न से दुर्जना पढ़े दोज कैसूल पौड़ी सब निधान कर जिस दे हर करे सो होवे जप जप जीवे संत जन पापा मल तोवे चरण कमल हृदय वसे संकट सब खोवे गुर पूरा जिस पेटिए मर जन्म ना रोवे प्रभु दर्श प्यास नानक घणी कृपा कर देवे श्लोक दखना महला पंजवा पूरी परम वंजाए प्री मोहब्बत हिक तू जिथों वंजे जाए तिथाऊ मौजूद सोए महला पंजवा चढ़के कोड़े कुंदे पकड़े खूंडी दी खेडारी हंसा से ती चित उलासे कुकड़ दी ओडारी पौड़ी रसना उतरे हर श्रवणी सुने सो उदरे मिता हर जस लिखे लाए पावनी से हस्त पविता अठ सठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता संसार सागर ते उदरे बिख्या गढ़ जिता नानक लड़ लाए उधारियन दया सेव अमिता श्लोक महला पंजवा तंदड़े पुलाहा चित ना आवे हे करो नानक से।

सबे सिख उबारियन प्रभ काशवारे निंदक पकड़ पछारियन झूठे दरबारे नानक का प्रभ वड्डा है आप साज सवारे पौड़ी प्रभ बेअंत किछ अंत नाहे सब तिसै करना अगम अगोचर साहेबो जिया का परना हस्त दे प्रतपालदा परण पोखण करना मेहरवान बख्शिंद आप जप सच्चे तरना जो तुद पावै सो फला नानक दास सरना। श्लोक महला पंजवां। तिन्ना पुख ना कारही जिसदा प्रभ है सोए नानक चरणी लगिया उदरे सबो कोए। महला पंजवां। जाचिक मंगे नितनाम साहिब करे कबूल नानक परमेश्वर जजमान तिसे पुख ना मूल। पौड़ी मन रत्ता गोविंद संग सच पोजन जोड़े प्रीत लगी हर नाम स्यों ए हस्ती कोड़े राज मिलक खुशियां कणी त्याए मुख न मोड़े ताडी दर प्रभ मंगना दर कदे न छोड़े नानक मन तन

14 अब मोहि जलत राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया, रहाओ मन मारण कारण बन जाये, सो जल बिन भगवंत न पाये। जे पावक सुर नर है जारे, राम उदक जन जलत उबारे, पव सागर सुख सागर माही, पीव रहे जल निकुटत नाही, कह कबीर पज सारंग पानी, राम उदक मेरी तिखा।

सेव कहो कबीर भगत कर पाया, पोले पाए मिले रघुराया। गौरी कबीर जी गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती। कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह कह जन

हम कत सूद हम कत लोहू तुम कत दूद कहो कबीर जो ब्रह्म विचार है सो ब्राह्मण कहियत है हमारे गौड़ी कबीर जी। अंधकार सुख कबे न सोई है राजा रंक दो मिल रोई है जो पैरस ना राम न कहबो उपजत बिनसत रोवत रहबो रहाओ जस देखी है तरवर की छाया प्राण गए कौ का की माया जस जंती में जियो समाना मुए मरम को का कर जाना हंसा।

是送到大人这里，你跳到哪了？这家里红灯都拿着三朵灯了，这地上没出来的。我不给大人们看书的，楼上都从哪里打？这真的给你直接的呀，真的打的真的呀。ये तेरे को कोई वाद घाट हो जाए, कोई चंगा माड़ा हो जाए, घबराने की लोड़ नहीं। अठारह पीसा का इशनान कर चुके हुए बाप उतर जाने पर इतने साढ़े कई विद्वान सज्जन सोच तो बाप सोचना करते पर इसे लगन सोच तो भाव सोचना नहीं ऐसे सोच तो भाव है पवित्रता इतना बिल्कुल इसे लगन गुरु अर्जन साहब ने शुक्र साहब की बंदे कहेंगे

अस्तित्व का कारण कर दी, ईर्ष्या में लौड़ा। हथियार होने का गुरु नानक साहब तो पहला इस ईर्ष्या लिख लिया गया। वक्त के धार्मिक आगू ने लोगों को समझा दिता कि जिंदगी में विचरते हैं, किन विचार करते हैं, जे तेरे को कोई वाद घाट हो जाए, कोई चंगा माड़ा हो जाए, घबराने की लोड़ नहीं। अठा रुपी सा इनान करे चीते हुए बाप उतर जाए। इतने साढ़े कई विद्वान सज्जन सोच तो भाव सोचना करते, पर इतने लवन सोच तो भाव सोचना नहीं। इतनी सोच तो भाव है पवित्रता। इतना बिल्कुल इतने लवन गुरु अर्जन साहब ने सुखम साहब की बंदे कहेंगे

तू वाहेगुरु बख्शिश करे कि बाणी दे एक शब्द गाउण लई कोई गीत नहीं, इसनू समझ के अपने हिरदे विच उस अनुसार जीवन बनाउण लई है। एक कोई बीते समय की गाथा नहीं, इसनू अजोके समय दे विच समझ के पुरातन पूर्व काल दे विच जो कुछ होया है उसनू समझना है ताकि मुड़ साडे नाल ओहो जे हालात ना वापरन। हालात मुड़ ओहो जे ताई वापरदे ने जदों मनुख अपने बीते इतिहास तो सबक लेना बंद कर दे। असीं जदों शब्द की अगवाई तो हट के केवल कुछ ऐसे लोगों के पिछे लग जाने हैं जिन्हों का मकसद केवल धर्म के उपर कब्जा करना होंगे, उदों हमेशा ही हालात बिगड़ जाते। तो चलो सतगुरु बख्शिश करे कि असी बाणी की रोशनी के बाणी नूं पढ़दियां होइयां समझदियां होइयां मौके के हालात नूं समझिए ते उस संदर्भ दे विच ऐसे लोगों दे नूं अपना सहयोग दईए जिहड़े लोग केवल गुरु ते गुरु ग्रंथ साहिब लई जूझ रहे ने, उनकी आन ते शान दे लई काम कर रहे ने, ऐसे लोगों का सहारा बनीए ताकि गुरु ग्रंथ साहिब नूं साडे तों कोई खो ना सके। साढ़े दो तख्तों के उपर से गुरु के बराबर एक दूजा गुरु आप बिठा दिता गया है, जे असी उन्दे तो सुचेत ना होए तो यकीन जाने की हुई भुल, इस भुल के लिए चुप रह के बर्दाश्त किए जाना सानू सदियां पिछे लै जाएगा ते फिर पछताउण दा कोई फायदा नहीं होएगा। सतगुरु बख्शिश करे। इन्हां शब्दों के नाल कीर्तन की समाप्ति है। पुजुग दी खिमा गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ठीक है।

Eles mal. कोई मेरे भुले हुए मन नूं समझा दे, मेरा मन भुल गया। सच जाने भुलदा मनुख उथे जिथे दो चीजा आ जा, जिथे दो चीजा ना हो उथे मनुख कदे नहीं भुलदा। भुलन का खतरा, भुलन का एहसास केवल उदो हुंदा है जदों एक तो वध चीजा आ जा। मनुख सड़क से तुरिया जाता है ना, सीधा रस्ता तुरिया जाता है, पर तुरद्या तुरद्या जदों कितने राह में चौराहा आ जाए जां दोराहा आ जाए उदों मनुख सोच ही पै जाए किस पासे वल जावां, मत किसी भुलेखा खा जाओ। वो तो खड़ो के पूछ लेना ज्यादा बेहतर समझ, मत किसी गलत मोड़ तुर जाव, सारी रात तुरता चला जाव, सवेरे जाके पता लगे ओह मैं तो गलत राह तुरा, फिर कितने वापस ना तुरना पै जाए। बिल्कुल इसे तरह मनुख नूं भुलण दा एहसास या खतरा उदों आउंदा है जदों इक तो वध राह हो जाए। गुरु तेग बहादुर साहब ने मनुखी मन का हाल बयान किया, कहते हैं मेरे अकाल पुरख जिंदगी दे विच धर्म दे राहों नूं वेख के मेरा मन गुमराह हो गया, भुल गया। तो दिन रात वेद आदक पुराण आदक धर्म पुस्तकों पढ़ भी रहा, पर पढ़ के मेरा मन एकाग्र नहीं हो रहा, उनके तो समझ ग्रहण नहीं कर रहा, पढ़ता जा रहा। सच जाने मनुख धर्म पुस्तकों पढ़ता रहे, उनका रट्टा भी मारता रहे। असि आम सब प्रेरते हैं नाम जपो, मनुख नाम भी जपता चला जाता है, पर नाम जपते ही जपते हैं मनुख का मन अजिहा कुराने पैदा है कि वह सच के राह तो छड़ के जाता है। जिस राह तुरद इस भुलेखे ही तुरया जाता है बी मैं ठीक रस्ते जा। गुरु तेग बहादुर साहब ने बड़ा खूबसूरत आख्या, कहते ने ना हर भजिए हो ना गुर जन सेवे हो न उपजे हो कस किया ना। कहते हे मेरे मालिक ना मैं हरि प्रभु का भजन किया, ना मैं गुरु की सेवा की, ना ही मैं उनके शब्द विचों कोई ज्ञान हासिल कर सकता। सच जाने मनुख भुलदा अज्ञानी हो गए, अज्ञानी मनुख भुल गए। जो मनुख के मन में अज्ञान का आ घेर दिए, ज्ञान उनके वस विच नहीं रहता, उदो मनुख जिंदगी तो बेतरतीबा हो जाता। मनुख की इस बेतरतीबी का लाभ चलाक मनुख उठाते हैं, ये नहीं कि केवल साथ समाजिक जीवन के, नहीं
ਵੀ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰਗ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਖੜੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਨਰਕ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਖਰੀ

तू कैसा गुरु है, तू कैसा अज्ञानी है। देख गुरु तनु एक वस्तु ना देखे पहले दिखने हुई है दस वस्तुओं भी तेरे को खो रहे फिर की करेगा केंद्र एक भी ना दे दस भी फिर ले जिड़ी तू एक वास्ते आके अरदास की है तेन वो ना दे बल्कि पहले दिखी हुई दस वस्तुओं भी तेरे को खो रहे केंद्र सौ मुड़ा कहो कहां करे है मूर्ख मन दस उसका की बिगाड़ लेगा केंद्र ने इसलिए उनके नाल नाराजगी नहीं करनी केंद्र ने उनके नाल समझ पैदा करनी है और शब्द के ज्ञान हासिल करना है कि उस अकाल पुरख ने तो मैंने पहले ही इनिया दातां दित्तियां ने जे एक दात नहीं देगा केंद्र ने मेरा कोई भला होना मैं उनके नाल नाराजगी ना कर पर बदकिस्मती है असी सुखमणी साहब के रट्टे से जूरू लगा रहे पर उनके विच दित्ता होया गुरु के ज्ञान उसको हासिल नहीं कर रहे उनका रिजल्ट यह होता है कि अज्ञानता विच आके साडा मन कुराए पैदा फिर धर्म की है अधर्म की है सानू इस गल की भी सोझी खत्म हो जाए मैं एक बेनती जरूर करनी चाहना जे मेरी उस बेनती संगत गुस्सा की ना समझ सिख रहत मर्यादा दे गुरुद्वारे सिरलेख में बड़ा स्पष्ट आता है कि गुरु ग्रंथ साहब के बराबर किसी होर ग्रंथ का प्रकाश नहीं गुरुद्वारे सिरलेख के मैं नहीं लिखा हुआ रहत मर्यादा है 1936 की बनी पर साडे मन इतना अज्ञानी हो गया है उन्होंने गुरु के शब्द तो ज्ञान लेना बंद कर दिता है केवल रट्टे जाप तक सीमित हो गए हैं साडी अखां के सामने गुरु ग्रंथ साहब के बराबर किसी भी चीज का प्रकाश हो जाता है असी मत्थे टेक लेंगे भगत रविदास जी ने शब्द का ज्ञान दिता है जिन्हें लोग धर्म के आगू बने बैठे सन धार्मिक ब्राह्मण सी उन्होंने नाल भी ज्ञान चर्चा करके उन्होंने ज्ञान का प्रसाद दिता पर कैसी अजीब गल है कि अज भगत रविदास जी के ज्ञान ना हासिल करते हैं भगत रविदास से गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में बैठे तो दुनिया का हर मनुख गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नतमस्तक है तो नतमस्तक केवल गुरुआ नहीं होंगे भगत रविदास जी भी होंगे उन्होंने भगत रविदास जी की बाणी को ज्ञान हासिल करना है तो भगत रविदास की बाणी को पढ़ के उस ज्ञान के नाल लोगों को दिखाना है कि आ भगत रविदास जी सन आ उन्होंने विचार सन आ उन्होंने ज्ञान सी जिस ज्ञान के नाल उन्होंने वक्त के धार्मिक गुजारियों को जीत लिया पर उस ज्ञान को हासिल ना करते हुए अज गुरु ग्रंथ के दुआले भगत रविदास जी का बराबर आसन आ गया जबकि गुरुद्वारा सिरलेख अंदर स्पष्ट लिखे है गुरु ग्रंथ साहब के बराबर किसी ग्रंथ का प्रकाश नहीं हो सकता मैं बेनती करना चाहता प्रबंधक वीरां नूं कि उन्होंने इनकी बाबत ज्ञान नहीं कि वह रहत मर्यादा पढ़ लें यह गुरु ग्रंथ साहब की बाणी की तोहीन रहत मर्यादा स्पष्ट दर्ज है गुरु ग्रंथ साहब के बराबर किसी चीज का आसन नहीं लग सकता उनके नाल बराबर चंदोआ नहीं लग सकता पर तुहाडे सामने गुरु ग्रंथ साहब के बराबर प्रकाश ही होया चंदोआ भी लगा होया ते मैं प्रबंधक पीरां नूं हक जोड़ के बेनती कर देना चाहना कि रहत मर्यादा नूं पढ़ लो ते रहत मर्यादा के मुताबिक भगत रविदास जी के ज्ञान नूं हासिल करिए ताकि भगत रविदास की बाणी साडे हिरदे विच वस जाए उन्हां दी बाणी तो ज्ञान हासिल करके असी दुनिया के लोगों को दस सकी
कि ये भगत रविदास जी का ज्ञान सी, ये ज्ञान साडे हिरदे विच रुसनाया जाए। उस ज्ञान के नाल साडा चुगड़दा सुखी हो सके, जे उस ज्ञान ना हासिल करके साडा मन भुल सकता है, तुराए पै सकता है। ते तुराए पया होया मन शब्द के विचों ज्ञान हासिल नहीं कर सकता। इस गल का गुरु तेग बहादुर साहब ने अपनी बाणी में जिक्र किया, कहने को माई मैं कोई गुरसिख कोई विद्वान कोई रब का प्यारा ज्ञान दे दे मेरे इस भुले मन को समझा दे। मेरा एक भुलिया होया मन वेद पुराण पढ़ रहा है, धार्मिक पुस्तक पढ़ रहा है, पर पढ़ते होया भी उनके विचों ज्ञान हासिल नहीं कर रहा। इसे करके मेरा मन एकाग्र नहीं होता, क्योंकि सतगुरु ने बाणी में स्पष्ट कर दिया है, ज्ञान का बद्दा मन है, गुरु बिन ज्ञान ना हो। जिन्नी देर तक बाणी विचों मन नूं ज्ञान मिलता रहिंदा है, मन एकाग्र रहिंदा है, जदों बाणी दे विचों ज्ञान मिलना बंद हो जाता है, एकाग्रता टुट जाती है। सतगुरु बख्शिश करे कि असीं भगत रविदास ते गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे विचों ज्ञान हासिल करिए। ज्ञान हासिल करके असि समुची मानवता दस सकिए बाणी ये बाणी का ज्ञान है, कि उस बाणी के ज्ञान हृदय में बसा के साडा ये लोक सुखिया परलोक सुमेला हो सकता है। जे असि वो ज्ञान ना बन सके केवल रस्ते जाप करते रहे, यकीन जाने मन भी एकाग्र नहीं होएगा, मन तुराए पै जाएगा, धर्म का अधर्म हो जाएगा, अधर्म के रस्ते तुरते जावे भुलेखा पेगा, शायद धर्म के रस्ते तुर रहे हैं। गुरु तेग बहादुर साहब ने अपनी बाणी इस गल का जिक्र किया है।

मैं की बोल बोलना, मैं मुंह को अजिहे केड़े बोल बोला, मुंह तो अजिहे केड़ी अरदास करा, जिस अरदास नु सुन के वो अकाल पुरख उनके हिरदे विच मेरे लिए प्रेम जाग पाए, जड़ी उसनु मेरी कीती हुई अरदास पसंद आ जाए। हजूर ने सवाल किए, इस शब्द विच जपजी साहब की पौड़ी जप बाणी विच उस अकाल पुरख नु मिलन दा एक आसान तरीका गुरु नानक समझाते हैं, क्योंकि एहो सवाल पहली पौड़ी विच आ जाए। ते सवाल की सी,

मैं सत्यार कि नहीं हुआ। सत्यार तो भाव है सच वाला, जिसने सच नू ढूंढ लिया लभ लिया। पुरातन समय विच रब नू मिलन दे कई तरीके समाज विच प्रचलित सन, कई तरीके प्रचलित सन। उन्हां तरीकियां दा गुरु नानक साहब ने सत्यार बनन तो पहला उन्हां तरीकियां दा जिक्र कीता। सवाल कीता, हे मेरे मालिक किव सत्यारा होइए, मैं सत्यार किने होवां, किवें सत्यार होवां। हुण सत्यार होण लई गुरु नानक साहब तो पहला समाज में केड़े केड़े तरीके प्रचलित सन, गुरु नानक पहला उन्हां तरीकियां दा जिक्र कर रहे हैं। की तरीके सन कहते हैं,

कहते इशनान करना, सुचिमता करनी, पवित्र होना, रब नूं पाउण दा इह जरिया। लोग सोचते सन आम रोजाना जिंदगी जींदिया जींदिया जिंदगी गुजारद मनुख को कई ऊंचाइया हो जाएं ने, कई गुनाह हो जाते हैं, कई पाप हो जाते हैं, तो उन्होंने बचने लिए मनुख सोचता कि 68 तीर्थां का इशनान कराओ, पाप उतर जाते हैं। इस पहली पंक्ति के बहुत लोग इस गल का जिक्र करते हैं, सोचने तो पाव है सोचना, सोचा सोचना हो गई। बहुत लोग यह सोचते हैं भी सोचने तो पाव है सोचना, पर इतने लगभग सोचने तो पाव सोचना नहीं, इतने सोचने तो पाव है पवित्रता, इशनान करना, शुच रखना। इसे लफज गुरु अर्जन साहब ने सुखमनी साहब के भी वरत्या, तो कहते हैं

दिन रात सुचिंता कर रहे हैं, दिन रात इश्नान प्या कर रहे हैं, पर तेरे इश्नान के नाल मन पवित्र नहीं हो रहा। मन की मैल ना तनते जा, क्योंकि इश्नान तन करता है, इश्नान का मन।

हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत चाड़ बिकै बिख खाई, माया मोह परम पै पुले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुने गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई, इक अरदास पाठ कीरत की रतकी।

सहन सहज सुभाय दर्शन परसयाय गुरु के जन्म मरण दुख जाय हो गए सब तक सामंदी नूर अरसों कुरसों चढ़ती है तो दिखे सच्चे।

निर्भूज है, सूज है, काल है, जाल है, अल्लाह है, जह है, अनंत है, महंत है, त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, सर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, वर्ण है, भूत है, वर्ण है, अगंज है, पांझ है, चूझ है, चांझ है, अमीक है, रफीक है, दंध है, बंद है, निर्भूज है, सूज है, अकाल है, जाल है, अल्लाह है, जह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, नरसरीक है, निर्लभ है, सब है, गप है, जप है, भूत है, सूत है, अलोक है, शोक है, कर्म है, परम है, अजीत है, पीत है, बह गाय, मान निदान है, नीक है, प्रीक है, भुजंग प्रयात छंद, नमो सर्वमान्य समाधि निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पावणे, अनंगी अनाथे नरसंगी परमाते, नमो पान पाने, नमो मन माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो दान तारने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समाधि स्वरूपे, ब्रभंगी परमाथे समाधि प्रभुते, कलंक बिनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरंग परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरंग परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरंग परम वृद्धे, नमो शास्त्रपाणे, नमो अस्त्रमाणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता, अपेक्षीय परमी अपोगीय भुवते, नमो जोग जोगेश्वरंग परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवेश धर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो शाशाह, नमो पूप भूपे, नमो दान धान्य, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमो संशनाने, नमो मंत्र मंत्रंग, नमो यंत्र यंत्रंग, नमो इष्टे इष्टे, नमो तंत्र तंत्रंग, सदा सच्चिदानंद सतरंग, सर्वं प्रणाशी अनूपे रूपे सुमातुलनिवासी, सदा सिद्धता बुद्धता वृद कर्ता, दूरदर्दंग अगंगो कर्ता, पारंग परम परमेश्वरं पुरुष पालंग, सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालंग, अशेदीय पेदीय नामंग कामंग, सुमा सुभराजी सुमाता सुदामंग, हे राजोर चाचरी शंभ, जले हैं खले हैं पीता भे हैं, प्रभु आजुआ देश है पेस है, भुजंग प्रयात छंद, अगाध्य वाद्य नंदी स्वरूपे, नमो सर्वमान्य समाधि निदाने, नमास्त्वं नरनाथे, नमास्त्वं परमाथे, नमास्त्वं गंजे, नमास्त्वं पंजे, नमास्त्वं काले, नमास्त्वं पाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वभेषे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो शाह शाहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो सोख सोखे, नमो सर्वरोगे, नमो सर्वभोगे, नमो सर्वजीतंग, नमो सर्वभीतंग, नमो सर्वज्ञानंग, नमो परमतानंग, नमो सर्वमंत्रंग, नमो सर्वजंत्रंग, नमो सर्वदृष्टंग, नमो सर्वग्रेष्टंग, नमो सर्वरंगे दर्पंगी अनंगे, नमो जीव जीवंग, नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे स्मातंग प्रसिजे, कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणाशी, सदा सर्वदा आर्यदसदंग निवासी, चरपट शांतता प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अखल जोगे जल भोगे, अजल राजे अटल साजे, अखल धर्मंग लाख कर्मंग, सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग बाने सर्वंग माने, सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग, सर्वंग कर्म भुगता सर्वंग जुगता,

नमो ज्योति ज्योति नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोज्य नमो पान पाने नमो कलय कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्रेन्द्रे नादंग भूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसासे नमो भाग भंगे भंगी रूपे अनंगीय नामे द्र भंगी द्र काले अनंगीय कामे एक अक्षरी शंब अजया लय भय भय भुव जुगनाश काश अगंज पांज लख पख काल अल लिख पीख नाम काम घाट नाथि परमाथि जो नियम मोनि न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्म भरम अगंजे लेखे भुजंग प्रयाद शंद नमाज तुल प्रणामे समाज तुल प्रणासे अगंजल नामे समाज तुल निवासे नरकामंग बभूते समाज दल स्वरूपे गोगर्मंग प्रणासी सुधर्मंग बभूते सदा सचिदानंद सदरंग प्रणासी ग्रीमन कुनिंदा समाज दल निवासी सद अजायब बभूते अजायब गनीम हरियंग करियम हरियंग करियम क्रीवल क्रीमल रहीम चतर जगर वारती चतर जगर जगर भगते सुजाम प्रभु सुभंग सर्वदा सर्व जगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अभंग अंग भूते चतर जगर वारती चतर जगर भगते सुजाम प्रभु सुभंग सर्वदा सर्व

आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु तां पाया साहिब सेती मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गा बने आईयां शब्द तां गावो हरि के राम मन जनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गल्ला सम्राट स्वामी सो कमन विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले

जन्म जन्म के कलबिख दुख काटे आपे मेल मिलाई रहाओ। इहे कुटुंब सब जी के बंधन पाई

0: 94.3 सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउन लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अति फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

सतनाम करता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद असम लाल के असर।

सुहागणी श्रृंगार बनाया साज गुण का गढ़ारू प्रेम परमल तन लावना अंतर रतन विचारू पागत रते से उतमा जात पात सब दे होई बिन नावे सच बिन नावे सब नीच जात है विष्टा का कीड़ा हुए हों कर दी सब फिर बिन शब्द हों ना जाई नानक नाम रते तिन हो मैं गई सच रहे समाये आस्था महला तीजा सचे रते से निर्मले सदा सची सोई ऐथे घर कर जाप दी आगे जुग जुग प्रगट होए रे मान मूरूड़े रंगले तू सच्चा रंग चढ़ाए रूढ़ी बाणी जे रपै ना तिस रंग लहे ना जाई राहु हम नीच मैले आत अभिमानी दूजे भाई विकार गुर पारस मिलया कंचन होई निर्मल जोत पार बिन गुर कोय नारंगी है गुर मिलिया मिलया रंग चढ़ाऊ गुर कै भय भाई जो रते सिफती सच समाओ बिन भय बिन लाग न लगई ना मानु निर्मल होए भय बिनु कर्म कमावणे झूठे नाउ न कोए जिसनु आपे रंगे सो रब सी सतसंगत मिलाए पूरे गुर ते सतसंगत उपजाए सहजे सच सुभाए बिन संगति सब ऐसे रहे जैसे पस ढोर जिन कीते तिसे न जाननी बिन नावे सब चोर एक गुण बिहाजे औगुण कविकणे गुर कै सहज सुभाए गुर सेवा ते नाउ पाया अंगूठा अंदर आए सबना का दाता ही कहे सिर तंदे लाए नानक नामे लाए सवारिया न शब्दे लय मिलाए आसा महला तीजा बिन नावे सब नावे न लोच दी जिस कृपा करे सो पाई बिन नावे सब दुख है सुख तिस सच जिस मन बसाई तू बेअंत दयाल है तेरी शरणाई गुर पूरे ते पाई है नामे वड्याई राउ अंतर बाहर एक है बहो बिद श्रेष्ठ उपाई हुक्मे कर कमराइंदा दूजा किस कही है पाई बुझना बुझना तुद किया एह तेरी सिरकारू इकना बख्शे मिल लहे एक दरगह का मार कढे कुड़ियारू एक धोर पीवत पवित पावन है तुद नामे लाई गुर सेवा ते सुख उपजै सच्चे शब्द सुभजाई एक कुचल कुचील विखली पथे नावो आप खवाई नाओ तन नाओ ना ओन सिद्ध ना बुद्ध है ना सांझमी वत है उत बताई नदर करे जिस अपनी तिसनो भावनी लाई सतसंतोखे संजमी मन निर्मल शब्द सुनाई लेखा पढ़ ना पहुंची है क्या अथ कहने अंत ना पाई गुर दे कीमत

अहंकारी तरह आप खवायम जुए बाजी हारी। बिन प्यारे भगत न हो वही ना सुख होए शरीर प्रेम पदार्थ पाई गुर भगती मन तीर। जिसनो भगत कराए सो करे गुर शब्द विचार हृदय एको नाम वसै होमे रुदा मार। भगता की जात पात एको नाम है आपे लय मन सवारू। जसदा शरणाई तिस की ज्यों पावे त्यों कारज सारू। भगत निराली अल्लाह दी जापै गुर विचारू। नानक नाम हृदय वसै पै भगती नाम सुमार। पै भगती नाम सवार आसा महला तीजा। निरस मैं भुलाया बिन नावे दुख पाई। सतगुर पुरख न भेटो जे सची बूझ बुझाई। ए मन मेरे बावले हर रास चख साध पाए। आ निरस लागा तू फिर मृथा जन्म गवाए राउ। इस युग महे गुरमुख निर्मले सच नाम रहें लिबलाई। बिन करमा किस पाई नाही क्या कार। कहया जाए आप पछाण शब्द म रहे मनो ताज विकारू। गुरसरणाई भज पाए बख्शे बख्शन हारू। बिन नावे सुख न पाई है ना दुख विचों जाए। जग माया मोह व्यापिया दूजै भरम पुलाए। दुहागणी फिर की सार न जाननी क्या कारू। करहे सिंगारू अणदिन सदा जल्दियां फिर रहे। सेजै रवे ना पतारू सुहागणी महल पाया विचों आप गवाई। गुर शब्दी सिंगारियां अपने सह लइयां मिलाई। मन मरना मनो विसारिया पा माया मोह गवारू। मनमुख मर मर जमह भी मरहे जामोदार हुए कुवारू। आप मिलायन से मिलाए गुर शब्द मिस विचारू। नानक नाम सुमाणे मुख उजले दत सचै दरबारू। आस्था महला पंजवां अष्टपदी अष्टपदियां कर दूजा। एको ओंकार सतगुर प्रसाद पंच मनाई पंच रसाई पंच वसाई पंच गवाई। इन विदोक नगर पुठा मेरे भाई दुरत गया गुर ज्ञान अंदर डाई रहाऊ। साज धर्म की कार दीनी वारू का फरहे मोहकम गुर ज्ञान विचारू। नाम खेती बीजों भाई मीतऊ

कारणराय तथा सांतरांतर सोई जांका किया सब हो आया क्या परम क्या माया कही है जो तिस पावे सोई भला ददा दोष ना देऊ किसे दोष करमा अपने जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजे अब्रजना तदा तार कला जन छोड़ी हर चीजी जिनकार रंग किया तिसदा दिया सबनी दिया करमी करमी हुकुम पया नन्ना ना भोग नित भोग है ना डीठा ना संभलिया गली हाउस हा गण फैने कंत न कल तो कब हूं मैं मिलया पपे पातशाह परमेश्वर विखण कहो पर पंच किया देख बूझे सब कहे जाने अंतर बाहर रब रहे फफे फाही सब जग फाथा जम कै संगल बंद लया गुर प्रसादी से जा नार उभरे जे हार शरणागत भज पया बब्बे बाजी खेलन लगा चौपड़ किते चार जुगा जी जंत सब सारी किते पासा ढालण आप लगा ਪੱਬੈ ਪਾਲਹਿ ਸੇ ਫਲ ਪਾਵਹਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ ਕਉ ਪਉ ਪਿਆ

मरण मधुसूदन मरण भया तब चेत रया काया पीतर अबरो कही है मम्मा अखर विसरिया जइया जन्म ना हो भी का दही जे कार सच पछाणे गुरमुख आख गुरमुख बूझे गुरमुख को जाने रार रब रह कट अंतर जेते की है जनता जन तो पाए तब सब पालाई कर्म हुआ तैन नाम लया लल्ला लाई तंदे जन छोड़ी मीठा माया मोह किया खाना पीना समकर सहना पाणे ता कै हुकम पया ववे वासुदेव परमेश्वर वेखण कौ जन वेश किया वेखै जाखै सब किस जाने अंतर बाहर रब रहया उड़ाड़ उड़ाड़ करें क्या प्राणी तिस है ते आवो जे अमर हुआ तिस

जन्म गया अणहुंदा नाउतर आयो पांडा अबरा का भार तोद लया जजा जोत हिर लई तेरी मूढ़े अंत गया पछतावेगा। एक शब्द तू चीना नाही फिर जूनी आवेगा। तुद सिर लिखिया सो पढ़ पंडित अबरा नो ना सिकार विखिया वन पहला वाह पाया पंदे पया पादे पिछो दिगल चटड़िया सस संजम गयो मूड़े कदान तुद कथाई लया। साई पुत्री जजमान की सा तेरी ए तान खादे तेरा जन्म गया। मम्मे मत हिर लई तेरी दे मूड़े हो मेर बड़ा रोग पै गया पया अंतर आत्मा ब्रह्म।

पढ़ै गुणै तू बहुत पुकारै बिन बूझे तू डुब मुआ दत्तै तामस जल मूड़े सत्थै थान प्रगट हुआ कगै कर कर फिरै तू मूड़े दद्दै दान ना तुदले आप पै पार न पवही मूड़े परम पर पंच तू बलच रहया सच आप खुआल्यो मूड़े सिर तेरे लेख पया पबै पवजल डुब मूड़े माया चित गुलतान पया।

गुण राम प्रभ जाने, गुण वस अवगुण नसै, तुद बाज एक तिल रह न सका, कहन सुन न ती जई, नानका प्रयो प्रयो कर पुकारी, रसन रास रामन पी जई। सखी हो सहेलड़ी हो मेरा पैर बणजारा राम, हर नामो वणजणिया रस मूल पारा राम, मूल मूलो सच कर टोलो, प्रभ पावे दामुंद पली, एक संग हर कै करें रलिया, पुकारी दर खली, करण कार समरथ सरी तार, आप कार्य सारी, नानक नदर कर तन सुहागण, नानक नदरी तन सुहागण।

तेरा सब किया तू धरधिया तुद समान मैं को राही तू दाता सब जी जाचक तेरे तुद बिन कैस सलाही अण मंगिया दान दी जयदाते तेरी भगत परे भंडारा राम नाम बिन मुक्त न होई नानक कहे बेचारा रासा महला पहला मेरा मनो मेरा मन राता राम प्यारे राम सब अंतर सब सच साहेबो आद्य पुरुष ब्रह्म पुरुष उतारे।

जिसके मन पार ब्रह्म का निवास जिसका नाम सत रामदास आत्म राम कृष्ण दृहाया दास संतर भाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जाने सुदास डर गए परवान अपने दास को आप कृपा करे किस दास को सब कुछ करे सगल संग आत्मीयता।

कई कोट सिद्धि जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर को बाए, कई कोट पाथर देश में जाए।

बाते सब ते निरे सब ते दूर नानक आप अलिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुरत निवासी कई कोट जन्मे जीवे मरे कई कोट बाजूनी फिरे कई कोट बैठते खाए कई कोट भाले थक पाए कई कोट

हाथ। कई कोड़ भय बैरागी, राम नाम संतन लागी। कई कोड़ प्रभु को खोजनते, आत्म पार ब्रह्म लहंते। कई कोड़ दर्शन प्रत्यास, तिनको मिलियो प्रभु अवनाथ। कई कोड़ मांगे सत्संगे, पागम सुन लागा रंगे। जिनको हो आप सो प्रसन्न, नानक के जन सदा धन धन।

से प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आसन प्रगास कई कोट सत्य बेटे सदा निहारे को नेत्रे कई कोट नाम रखिए अमर भय।

0: श्लोक
1: करण करण प्रवेत है दूसर नहीं कोई नानक तिस बल हारणे जल थल में जल सोए अस्परी करण करावन करने जोगे जो तिस भावे सोई होगे सुनवे थाप उठापन हरा अंत नहीं दिल सारा वारा उसमें धार अधर रहा वै उसमें उद्योग समावे हुक्म में ऊंच नीच दोहार हुक्म में अनेक

हाथ करावे, इसके हाथ होए ता सब कुछ ले, जो तिस भावे सोई करे। अन जानत दिखियावे रते, जे जानत आपन आप बचे। भर में भूला दे दिस भावे, निमक माय चार कुंड करियावे।

काठगढ़ पूरन ब्रह्म प्रयास अपनी बात आप बनाई मानुष जीए देख बड़ाई। इसका बल नहीं सहा थे रावण सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा दियो जो बाबे सुई सुनतियो सबू ऊंच नीच में बसे सबू शोभ भारत रंग हसे सबू

सब होए पंडित करे बखाने, सब मोन धारी लावे ध्यान, सबु तक तीरथ स्नाने, सबु सिद्ध साधक मुख ज्ञान, सबु कीट हस पतंग हो गया, अनुज जोन जन में धर्मिया, नाना रूप जो स्वामी दिखावे, जो प्रभु भावे ते न जावे।

जब लग जाने से पिछोए तब इसको सुख न ही कोए, जब जाने में किस करता तब लग गर्भ जौन में फिरता, जब धारे को बैरी नी तब लगने चलना ही पीत, जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए, तब कृपा से बंधन सोते गुरु प्रसाद नानक सोते, सर खटे लख कोठ धावे तृप्त नयावे माया पाछे पावे, अनंत भोग दुखिया के करे न सिरतावे थक सब मरे, बिना संतोष नहीं तो राजे, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे, नाम रंग सर्व सुख होए दुर्भाग्य से प्राप्त होए, करम करम ने आपे आप सदा सदा नानक अरे जापे, करम करावन करन हार किसके हाथ विचार, जैसे देख करे तैसा होए आपे आप प्रवेश होए, जो तीनों सो अपने रंग सबसे दूर सबों के संग, बूझे देखे कर देखे आपे एक आपे अनेक, मरे न दिन से आवे न जाए नाम सदहीं आसमाए, आप उपदेश है समझे आप फिर क्या सब कहता, आप तीनों आपन सारे सबसे तुस्ताओ करने हारे, उस दिन कहो कि छोए थान थनन करे कैसोए, अपने चलत आप करने हारे सोच करे रंगे पार, मन में आपे मन अपने माहे नान कीमत न जाए, सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद ने।

निर्णयतीना। भला भला भला तेरा रूपे सुंदर अपार रूपे, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुनी स्वर्ण बखाणी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जप नाम मन प्रीत। श्लोक संत सरन जो जन परे,

झूठ, जिसको हर्षम मन चिते आवे तो संत हिला नहीं दुलावे, जिस प्रभु अपना कृपा करे तो सेवक कहो किससे डरे। जैसा था तैसा दृश्य जाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सुनिया, गुरु प्रसाद सत्सुनिया, जब देखो तब सब किस मूल है, नानक तो सुखम सोई अचूल, न किस जन्मे न किस मरे, आपन चलित आप ही करे। आवल जावल दृश्य अन

रचते आप सगल में आप अंत जुगत रचते थापे हो थाप अवनाशि नाई कित खंड धारण धार रहो ब्रह्मंड पलख अभेव पुरख परता पाप जपाए तनाम से जाप जिन सब जाता सुख शोभावंत सगल संसार उधरे तिनु मंत्र प्रभ के सेवक सगले उधारन कल के सेवक दूत विसारन आपे मिल ले किरपाल गुलता सब जप भय निहाल आपे मिल ले किरपाल गुलता सब जप भय निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु किरपा करे बड़ भागे नाम जपत पावे विश्राम नाम कृष्ण प्रोकुटम धर्मान जो कित करे तो प्रभ कै रंग सदा सदा बसे हर संग सहज सुभाए होवे सो होए करणय हार पछाणे सोए प्रभ का किया जनु मीठ लगाना जैसा सात सा दृष्टाना जिसपे उपजे किस माए समाये सुख निधान उन्हों बने आए

श्लोक। सर्व कला भरपूर प्रवृथा जानन हारे जाओ के सिमरन उदरिये नानक तिस्फल हार पदे उठे गांडन हार गोपाले सर्व जिया पे पिटपाले सगल की चिंता जिस मन माहे तिसे बिरथा कोई नाए श्रीमन मेरे सदा हर जापे अवनाशी प्रविया पे आप आपन किया कछु न होए जिसको प्राणी लोचे कोए तिस बिन नाही तेरे किस का।

प्रभु की जोत सदल घट सो है। मनता हूँ क्या को गर्व है, जहाँ तक विशिष्टा दी आदर दे। असुरा जो को कहवे प्रभु की कला बिना कह ढावे। जे को होए बैदातार इस देन हार जाने गवार। जिस पर सातु ते हो रोगे आन सो जन सदा रोगे। जो मंदर को थामे थमन गुरु का सौध मने अथमन। जो पाषाण नाव चढ़ करे प्राणी गुरु चरण लगन करे। जो अंधकार दीपक पर दास गुरु दर्शन देख मन होए बिगास। जो माओ ध्यान में मार्ग पावे साधु संग जो प्रगटावे।

पुरबोले ते काल किया पाइए। दुख सुख प्रभु देवन हारे, अवर त्याग सुखे सितारे। जो कछ करे सोई सुख मान, भूला काहे तेरे अजान। कौन बस आई तेरे संग, लप्त रहो रस लोभी पतंग। राम नाम जप हृदय माए, नानक पत्ते की घर जाए। जिस बस पर को लेन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। तजब मान ले ओ मन मोले, राम नाम हृदय में तोल। लाग खेत संते संग चाले, अवर त्याग पिता जंजाल। धन धन कहे सब कोए, मुखो जल हर करके सोए। पार विरलावा पारे, नानक तां सद बल हारे। करनो साध के धोए धोए पियो, अर्प साध को अपना जियो। साध के धूर करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान। साध सेवा वंड भागी पाइए, साध संहर कीर्तन गाइए। हम तो विघन से साधु राखे, हर गुण गाय अमृत रस चाखे। उठ गही संग से दर आया, सर्व सुख नाम से पाया। निर्गत को जीवाल नुहार, भूखे को देवत आधार। सर्व निधान जाति दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लेना पाए। सब चिकित्साओ करने जोगे, पिछिल दूसर हुआ न होगे। जप जन सदा सदा दिन रहनी, सबसे ऊंच निर्मल ए करणी। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल किया। जाके मन गुर की परतीत, तिजन आवे हर सब चीत। भगत भगत सुनिए ते हो लोए, जाके हृदय एको होए। सत्करणी सच शांति रहत, सच हृदय सतमुख कैत। साची दृष्ट साचाया कारे, सचवर ते साचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता। रूप न रेख न रंग पृथे, प्रेम गुण से प्रभु भिन्न। तिसे बुझाए नानका, जिस हो सो पर सन्न परि। अविनाशी प्रभ मन में राख, मानस की तू प्रीत त्याग। किसे परे नाई किस कोए, सर्व निरंतर एको सोए। आपे बिना आपे दाना, गहर गंभीर जहीर सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निधान दयाल बखंड।

सा पूरन सरना जो जो कर पाया सोई हो। हरन भरन जाता नेतर कोरे तिसका मंत्र न जाने हो रे। आनंद रूप मंगल सद जाके सर्व फूक सुनिए घर जाके। राज में राज जोग में जोगी तप में तपी सर ग्रत में भोगी।

जाकी लीला कीमत लाए, सगल देव हारे अवगाए। पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत। उम्मत ज्ञान ध्यान दिन दे, जन दास नाम भयावे से। ते गुण में जाको भरवाए, जन्म मरे फिर आवे जाए। ऊंच नीच किसके स्थान, जैसा जन वे तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाते रंगे, नाना भेद करे तिरंगे। नाना विष्णु विस्तारे, प्रभु अविनाशी संसार। नाना चल करे क्षण माहे, पूरे पूर्ण सुधाए। नाना विध कर बंस बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सबगर किसके सब किसके खाओ, जब जब जीवे नान करनाओ। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। नाम के धारे सिमरत वेद पुराण, नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान। नाम के धारे आकाश पताले, नाम के धारे सगले अकार। नाम के धारे पुण्या सब भवन, नाम के संग उतरे सुन सुन। कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नाम चौथे पद में सूजन गत पाए। रूप सतगा का सत स्थान, पुरुष सत केवल प्रधान। पर सूत सत सत जाति बाणी, सतपुरुष मानस मानी। सत कर्म जाति रचना सत, मूल सत सत उत्पत। सत करणी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए किसे सब भली। सत नाम प्रभु का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरु ते पाई। सत बचन सा रूप देश, सत से जन जा तैर दे प्रवेश। सत नृत बुझ है जे कोए, नाम जपत की जत होए। आप सत्य किया सब सत्य, आपे जाने अपनी मित गते। जिसके शिष्य सो करने हार, और न बूझ करत विचार। करते की मित न जाने किया, नानक ज्योतिष भावे सोवर पिया। बिस्मल बिस्म भय बिस्माद, जिन बुझिया तिस आया स्वाद। प्रभु के रंग राज जन रहे, गुरु के वचन पदा।

जन का सेवक सोवड भागी जन के संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे।

0: केरबोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CIFT 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम स्लिप तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call
4: 250-392-3874।

बनाई फिर दौलत कतहु नाही। परमेश्वर नू मिली हुई आत्मा, अपनी होमे दा त्याग कीती हुई आत्मा परमेश्वर दे सिमरण दे विच तल्लीन हुई सिमरती रूप बनी ब्रह्माकार बिती परमेश्वर दा शुकराना करदी हुई दुनिया नू जदो सामने देखदी है ता अपने परमेश्वर दी उस्तत करदी है। वो सतोगुणी साधना करन वाली जीवात्मा फरमांदी है, उस अवस्था नू गुरु जी ने दस्या है कि मेरे परमेश्वर ने इस जीवन दे अंदर आ गया सुख मेरे मिता। हे मेरे मित्र, मेरे परमात्मा ने, मेरे वाहेगुरु ने, मेरे पिता ने, मेरे मालक ने, मेरी आत्मा ने, मेरे दिल दे विच बैठे परमेश्वर ने प्रगट होके मैनू दिता की है, सारा ही मेरा अगला जीवन सुखमय कर दिता है। लोक सुखे पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। इस जगत दे विच जिन्नी भी किरिया जीवात्मा ने कीती है इस नू अगे कोई राह नहीं है। जह मार्ग के गने जाहे न कोसा, हर का नाम उहां संग तोसा। ना सानू अगे कोई रोशनी है, ना सानू पता है पिछो कितों आए हैं, ना पता है इस शरीर का त्याग करन तो बाद साड़ी यात्रा कित्थे होनी है, जीवात्मा ने कित्थे जाना है, कुछ नहीं पता। इतों असी कार से जाते हैं, सानू पहले पता है कि असी किस प्रयोजन दे ले जा रहे हैं, साडा मनोरथ की है। जगत विच आण दा समुचा मनोरथ ही सानू पता नहीं है। इसलिए इस शब्द च गुरु अर्जन देव जी कहंदे ने, जिहड़ा परमात्मा नू सिमरन करदा है फिर परमात्मा उस नू अपनी मेहर दे विच ले आंदा है, पर उसकी मेहर पाण दे लई परमेश्वर ही बणत बनाए, परमेश्वर ही योग बनाए, परमेश्वर बणत बनाई। कहंदे परमेश्वर ने मेरा ये योग बनाया, हे दुनिया दे लोको, मेरे परमात्मा ने मेरा अगला सारा जीवन ही सुधार दिता। ये छोटी गल है कि जिथे नजर जाए नजर दी रंगा तो यात्रा उठ गई, नजर दी विषया तो यात्रा उठ गई। जिथे भी अगे मन देखदा है, मन अविद्या दे द्वारा जब तक उसनू परमेश्वर नहीं मिलता, जब तक उसनू ब्रह्म ज्ञान नहीं हुंदा, जब तक उसनू अपने आपे दी पहचान नहीं हुंदी, तब तक उसका अगा अंधकारमय है। क्योंकि संसार तो बाहर साडी बिरती नहीं जाती, जिथे देखदी जिथों चलती है वह अज्ञान है, जिथे पहुँचती है वह भी अज्ञान है, क्योंकि संसार नू महाराज ने तमोगुण का रूप किया। मुंदामणी महला पंजवां दे विच आखर विच है, तम संसार चरण लग तरिए सब नानक ब्रह्म पसारो। दो दो अवस्था ने, जे संसार दृष्टि च आ रहा है तो इसका मतलब असी संसे विच रह रहे हैं, संसा है तो संसा नाम विक्षेप दा है, विक्षेप नाम हिलण नू कहंदे ने। हिलदे हुए पानी दे विच कदे भी चंद्रमा दा अक्ष ठीक तरह नजर नहीं आता। इस तरह ही जिहड़ी जीवात्मा डोलदी रहिंदी है, दुविधा दे विच हुंदी है, इसलिए कबीर जी का एक श्लोक है कि तुसी डगमग छाड़ रे मन बोरा। हे मेरे मन, तू क्यों आया विच बोरा हो गया है, तू की कर इस जीवन दे अंदर ए द्वैत बुद्धि नू छड़ दे। गुरु नानक देव जी ने मूल मंत्र विच पहला अक्षर एक ओंकार किया है, इसलिए एक ओंकार दी लखता करन दे लई पहले तैनू जेड़े तीन शरीर ने तेरी बिरती त्रैगुणात्मक होके मैली होई पई है, और मैली अख नाल देखोगे, पीली ऐनक लाओगे पीला नजर आएगा, स्वच्छ ऐनक चिट्टी ला लो पर जे उससे मिट्टी आ जाए तो धुंधला धुंधला नजर आएगा। इसलिए जदों गुरु नानक देव जी जगत विच प्रगट होए, उन्होंने अगे सारे ब्रह्मांड नू प्रकाश दे दिता। तत्वदर्शी पुरुषां दी ये पहचान हुंदी है, अवतारी पुरुष जदों आंदे ने ओ नारायण दी कला लेके आंदे ने।
आप नारायण कलातार जग में परवरियो। गुरु नानक देव जी आप ही नारायण गुरु नानक देव जी के रूप च बन के आए और उन्होंने नारायण नु किस तरह नारायण की लखता करानी है यह जीवन च काम किया, होर कुछ नहीं किया। चारे उदासियां धारण कीतियां तो जगह जगह जाके नाल मरदाने नु ले जाके पापी नहीं देखिया, पुन्नी नहीं देखिया, ठग नहीं देखिया, गनका दे औगण नहीं देखे। गुरु जी ने केवल ब्रह्म नु ब्रह्म दी लखता कराई है, क्योंकि अब गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दी यही एक खास सब तो दुनिया तो वेदा तो उपनिषदा तो इस विच एक कलयुग विच तारण दी समर्था है। ए वो बाणी है हमारी प्यारी अमृत तारी, ए अमृत इस विच चर्चर करदा अमृत है। और इसनों जदों पढ़ोगे दिन रात पढ़ोगे इसका अभ्यास करोगे, एक बार पाठ दो बार पाठ बार बार प्यार नाल पढ़ोगे, एक दिन हो जाएगा कि आप दी पाठ करदे करदे बिरती बिरहा वाली हो जाएगी। जिस दिन बिरहा आ गया एक अथरू आप दी अखां चो जे प्रभु दे भी योग च आ गया, पुत्रां धियां दे भी योग च नहीं, पैसा खो गया वह भी योग च नहीं, सारी दुनिया चली जाए पर गुरसिख दी अख चो अथरू नहीं आंदा। तत्ती लोह ते गुरु अर्जन देव जी बैठ गए पर अखां चो अथरू नहीं आया। ध्यान करिए अज अपने तीजे गुरुदेव दा, गुरु नानक देव जी जदों तीसरे रूप विच आए श्री गुरु अमरदास जी, भले अमरदास गुण तेरे। उन्हां दी जे आपां जीवन गाथा देखिए तां असीं इक छोटी जिही बूंद ओह वैराट गुरुदेव दे समुंदर दी लखता नहीं कर सकते, पर समुंदर विचों एक बूंद आई है, समुंदर चों एक किनका आया है। असी अपने हिरदे विच जदों गुरु जी का ध्यान करांगे, गुरु तां अंदर वसदे ने, सिर्फ प्रगट नहीं असी कीते, ये साडे कोलों भुल हो गई है। जिहड़ा मिथ्या ज्ञान है उसनू प्रगट कर लिया है, जबकि वह हाथ च नहीं आंदा और ना ही वह प्रगट हुंदा है। हनेरे तो कभी चानना नहीं हुंदा, तमो गुणमय संसार तो कोई चानना नहीं मिलना, इस करके साडा अगे हनेरा ही हनेरा है, कित्थे जाना कुछ नहीं पता। गुरु अमरदास जी के जीवन के विच एक छोटी जी घटना आती है जिसनों मैं संखेप विच एक दो पंक्तियां दसदी हाँ। जिस वेले दासू दासू जी ने गुरु जी के शरीर को थोड़ा ठोकर मारी सी, लत मारी सी, क्योंकि उन्होंने अजे समझ नहीं सी, उस वेले गुरु अमरदास पिता जी ने उन्होंने चरण फड़ ले कि ये मेरे गुरुदेव दी अंश ने, किते तुहानूं पीड़ा तो नहीं होई कि ये मेरे शरीर बजुर्ग है। 72 साल की गुरु अमरदास जी की उम्र है और गागर चुक के 12 बजे तो बाद उठ के साडा इतिहास प्रमाण है कि सेवावां चो सेवा गुरु नानक देव जी की सारी सेवा तो गुरु अमरदास गुरुदेव जी ने ले ली है। इसलिए जिसने सेवा सीखनी होवे सवेरे उठ के गुरु अमरदास जी का ध्यान करिया करे, किधरे सानू भी जाच आ जाए। असं तो अपनी जवानी पितरा धियां की सेवा ले ला देंदे हाँ। गुरु अमरदास पिता जी ने कहा कि यह मेरा बजुर्ग शरीर है, इस बजुर्ग शरीर दियां सख्त सख्त हड्डियां दे नाल किते मेरे गुरुदेव दे नूर अंश नूं किते कोई तकलीफ तो नहीं होई। पैर दबा रहे ने, उन्हां दी सेवा कर रहे ने, इसलिए निम्रता इन्नी निम्रता जे जीवन विच जिस फल नूं दरखत लगदा, जिस दरखत नूं फल लग जांदा है वह नीचे झुक जांदा है। इस तरह ही जदों असी पानी पीना हुंदा है असी नीवे झुके बिना तो नलके तो पानी नहीं पी सकते। झुके हुए पलड़े का असी सौदा खरीद लैंदे हाँ, झुके हुए पेड़ तो दरखत पेड़ तो फल गिरदा, फल गिरना नहीं पैंदा गिरी जांदा। इस तरह ही असी जीवन विच जे ब्रह्म ज्ञान नूं प्राप्त कर लवांगे, फल कारण फूली बन राए, फल लागा तब फूल बिलाए, ज्ञानी कारण कर्म अभ्यास ज्ञान पया तो करमै नाश। सारे कर्मां दा करता करता भाव ही साडा मिट जाएगा, करता भाव ने सानू अंधकार च लियांदा है। इस करके अज बड़ा वड्डा दिन है कि अज असी गुरु अमरदास जी दे प्रगट होण दे दिन वाले दिन इस गुरुद्वारा साहब दी पावन धरती दे उत्ते बैठे हैं। सा धरत पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए, से जंत पई हरियावली जिनी मेरा सतगुरु देखा जाए। ये जिया जंत भी उस वाइब्रेशन अनुभव करते हैं।
ऐसा प्रकृति ने देखा है कि जिस जगह ते कीर्तन हुंदा होवे उस जगह दे उत्ते बार डालियां दी जड़ी जड़ी तरक्की डालियां दी जड़ी पौष्टिकता है डालियां च जो हरियावल है जो फुल्लां च लालापन है वो भी इस वाणी दी आवाज दे नाल कुछ होर रूप हो जाता है। प्रतख प्रमाण है कि गुरु रामदास जी दे सरोवर दे विच पानी दे विच करंट पास हो जाता है। इस करके अर्थ कर देने कि पानी नाल करंट ना पास होवे। गुरु रामदास जी दे सरोवर विच जदों बाणी दिन रात जो भी घंटे बाणी पढ़ी जाती है उस सरोवर दे विच ओ ऊर्जा है ओ शक्ति है कि जो कम ईश्वर ईश्वर मैंने माया दे विच कौआ जन्म मिलिया कां दा जन्म मिलिया कां दी जूनी मिली तो जब तक वो भोग नहीं भोग हटेगा उसको अगला जन्म नहीं मिलेगा। 84 लाख जूनिया साढ़े लिए निश्चित ने पर कोई दुनिया की ताकत मायावी शक्ति कां नूं हंस नहीं बना सकती। पर वह कावां ने साडा इतिहास प्रमाण है कि गुरु रामदास जी के सरोवर के जिस समय उन्होंने वह बूंदा मिलिया उन्होंने उन्होंने शुद्धि लाई तो कावां तो हंस हो गए। इसलिए जे स्किन चिट्टी हो सकती है जे जन्म बदलिया जा सकता है जूनी बदली जा सकती है जीवन क्यों नहीं गुरबाणी नाल बदलिया जा सकता। जन्म मां दे सकती है पर जीवन दे गई सानू गुरबाणी रूपी गुरुदेव जन्म देंगे। इस करके गुरुदेव नू माता भी क्या है माता जिस तरह जन्म देंदी है इस तरह ही गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी ही साड़ी मालक है स्वामी है। गुरु ग्रंथ साहब जी ही साढ़े माता ने गुरु ग्रंथ साहब जी ही साढ़े पिता ने। पर जे बच्चा माता पिता दे चरणी हाथ ही ना लाए जे बच्चा माता पिता दे कोल बैठे ही ना जे बच्चा माता पिता दी जायदाद नूं छड़ के घर नौकरां दे कोल तुरिया फिरे ता ओ बच्चे दी दुर्गति हो जाती है। ओ बच्चा अंधकार दे विच चला जाता है। जिस तरह कल इस शरीर ने दृष्टांत दिता सी कि राजे दा बच्चा भिखारियां दी संगत करदा करदा ठूठा फड़ के मंगण लग जाता है। राजे दा राजकुमार और राजा स्वयं भी कई बार राज सिंघासन ते बैठिया अंधकार विच जाके अज्ञान दा संग करके निंद्रा दोषान करके निंद्रा विच चला जाता है और सुपना देखदा कि मैं भिखारी हाँ। नरपत एक सिंघासन सोया सुपने पया भिखारी अछत राज बिछरत दुख पाया सोगत पई हमारी। राज सिंघासन ते बैठ के कोई सुपना देखण लग जाए तो उसनु कौन राजा बनाएगा उसकी कंगाली कौन कटेगा। कोई उसनु कंगाली तो दूर नहीं कर सकता। उसकी अपनी साधना उसकी अपनी सिमरति उसका अपना निंदर छुटन का संकल्प उसनु सुपने दे दुखां तो इस वेले ठोकर लगेगी तो उस वेले वो जाग जाएगा तो राजा तो वह है। इस तरह ही गुरु जी कहंदे ने गुरु अर्जन देव जी 16 राग दे अंदर कहंदे ने हे मेरे मित्र मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन नूं मोह दी निंद्रा तो अज्ञान दी निंद्रा तो अविद्या दी निंद्रा तो जगा के अंधकार विच ठोकरां खांदी जीवात्मा नूं दुख नाल लिपड़े हुए साडे संस्कारां नूं साडे मैले अंतकरण नूं हम मैले तुम उजल करते। ओ उज्जल परमात्मा ने साडी मत नूं सिमरन दे के साडी मत नूं ज्ञान दा साबण ला के इस तरह निर्मल कर दिता जिस तरह गंगा दा जल निर्मल है।

अमरदास जी महाराज जी के वचन, मेरे गोविंद अपने जन कौ दे वडियाई। गुरमत राम नाम प्रगासों, सदा रहूं शरणाई। असल च साडी मंग तों साडी अवस्था दा पता लगदा है। साडी मंग जिहड़ी है ना, वट एवर वी डिमांड, वट एवर वी आस्क फॉर फ्रॉम गॉड फॉर गुरु, इट टेल्स वेयर वी स्टैंड स्पिरिचुअली। असीं खड़े कित्थे हां, असीं जिंदगी च इस गल नूं हर रोज देखदे हां। थोड़ी कट कर, असीं जिंदगी च देखदे हां बच्चियां दियां मंगां बच्चियां वालियां होण, क्योंकि असल च गल इत्थों स्पष्ट हो जाती है कि बच्चों दियां मंगां तो ही बच्चों की अवस्था का पता लगता है। तो जदों गुरु नानक पातशाह जी ने देखा कि ना बाबा बुढ़ा जी नूं, ही वॉज ओनली 9 years old एट दैट टाइम, उन्होंने गल्लां सुनिया, उन्होंने वचन सुने तो की किया, तू बच्चा नहीं है तू बुढ़ा है। बुढ़ा किस चीज ने बनाया, मच्योर किस चीज ने बनाया सी? मच्योरिटी डज नॉट कम विद एज, इट कम्स विद ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ। इन दिस वर्ल्ड वी से मेंटल ग्रोथ, बट द रियल मच्योरिटी इज नॉट ओनली फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ और एकेडेमिक ग्रोथ, इट कम्स विद स्पिरिचुअल ग्रोथ। मेंटल ग्रोथ नाल असी वी हैव सिलेक्टिव पीपल ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल वेयर वी कनेक्ट विद एकेडेमिक ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ, विद द स्पिरिचुअल ग्रोथ दैट प्रोवाइड अबिलिटी टू कनेक्ट विद ईच अदर विद एनी वन एंड एवरी वन। सो वो जिहड़ी ग्रोथ है स्पिरिचुअल ग्रोथ, एज दे नाल संबंध नहीं रखती, उम्र दे नाल संबंध नहीं रखती, वह तो फिजिकल ते मेंटल ग्रोथ नाल संबंध नहीं है। ये साडियां मंगां तो साडी अवस्था का पता लगता है, साडियां मंगां साडे जीवन की गहराई का पता दसदियां ने। और भाई गुरदास जी का वचन आप जी नाल मैं साझा करा, वो फरमाते ने कहते ने चार पदार्थ आखियन सतगुर दे ना गुरसिख लेव है। कि चार पदार्थ का अर्थ है कि एवरीथिंग विच वी कंसीव इन दिस वर्ल्ड टू बी हैप्पी, एवरीथिंग और एनीथिंग विच वी कंसीव विच वी थिंक कैन मेक अस हैप्पी। तुसी सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे प्यारे भाई गुरदास जी फरमाते ने कि चार पदार्थ आखिन धर्म अर्थ काम मोख, ये चार पदार्थ ने। इंसान धर्म चाहता है, इंसान इकनॉमिक्स चाहता है, मनी चाहता है, पैसे चाहता है, खुशियों खुश होगा, धर्म अर्थ मेरिया मन दिया कामनावां पूरिया हो जाए ये चाहता है, तो मुक्ति चाहता है। इन दी एंड ये भी चाहता है कि मैं दुखी ना हो, सारा कुछ हो मैं सुखी चाहता। भाई गुरदास जी कहते हैं कि चार पदार्थ आखियां ने, चार पदार्थ कहे जाते हैं, सतगुर दे गुरु देना चाहता है ना गुरसिख लेवे, गुरसिख लैंदा नहीं है। दिस इज नॉट माई डिमांड। हुण की पता लगता है उतों, गुरसिख मंगता की है? वह मंगता है राज ना चाहू मुक्त ना चाहू। की मंगता जी? राज ना चाहू मुक्त ना चाहू मन प्रीत चरण कमला। आ गुरसिख की मंग है, इतों गुरसिख की सिख की मच्योरिटी का पता लगता है। इतने गुरु जड़ा है वह अपने सिख नूं लैके जाना चाहता है। तो जोड़ा शब्द आप जी नाल मैं साझा किया है, ये सतगुरु अमरदास महाराज जी मंग की रहे ने, मेरे गोविंद अपने जन को दे वड्याई। वड्याई का अर्थ की हुंदा? आनर, कि वाहिगुरु मैनू इस गल का आनर दे, इस गल का माण दे, इस गल की वड्याई दे कि गुरमत राम नाम प्रगासों सदा रहूं शरणाई, कि मैं अपने जीवन के अंदर जोत जगा सका,
मैं अपने जीवन के अंदर दीवा जगा सकां, मैं अपने जीवन च लाइट पैदा कर सकां। जिस व्यक्ति के जीवन से जोत जगी हुई है, अरे शब्द जेड़े ने सिंबॉलिक ने। एक शब्द मैं होर इन्हां तुकां दे नाल रलदा मिलदा आप जी नाल सांझा करां, गुरु अर्जन पातशाह जी का शब्द है, सतगुर शब्द उजारो दीपा। सतगुर शब्द उजारो दीपा, बिनस्यो अंधकार तेह मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा। भी जिस जीवन दे अंदर शब्द का दीवा जग पिया, जिस जीवन दे अंदर शब्द की रोशनी होगी, उस व्यक्ति दे जीवन दे अंदर पहली गल ते मंग बचदी नहीं है। ते जे मंग बचेगी तो इको ही बचेगी कि राज ना चाहो, मुक्त ना चाहो, मन प्रीत चरण कमलारे। आओ प्यार नाल एक बार फिर इन तुकां नूं गा के उस विषय तो ना टुटीए जिहड़ा सतगुरु सच्चे पातशाह जी साडे जीवन च लैके आना चाहुंदे ने। ओ ए साडी जिंदगी च मंग की है, असीं मंग की रहे हैं, असीं लभ की रहे हैं, साढ़े गुरुद्वारे आने का मकसद की है। वट इज़ द परपज ऑफ कमिंग टू गुरुद्वारा, वट इज़ द परपज टू बाओ इन फ्रंट ऑफ गुरु ग्रंथ साहब जी। की असं उ कुछ मंगना चाहते हैं जिन तो गुरु साहब छा चाहते हैं? असी जो पिछले बारी बावन अखरी की बाणी की विचार चलती थी, उस एक बड़ी कमाल की तुक सच्चे पातशाह ने बख्शिश की, जी बार बार कीर्तना के भी आप जी ने सरवण की होगी। वो ये कि एका बेदन दूजा व्यापी नाम रसायन ही सरिया, एका बेदन दूजा व्यापी राम रसायन भी सरिया। आर पेन इज नॉट दैट दैट वी आर सैपरेटेड फ्रॉम आर रूट्स, आर कंसर्न इज नॉट दैट दैट वी आर सैपरेटेड फ्रॉम गॉड, आर कंसर्न इज कि वी आर नॉट हैप्पी इनफ, वी आर नॉट सक्सेसफुल इनफ। साड़ी जिहड़ी तकलीफ है वो ये नहीं है कि असं परमात्मा तो वाहगुरु तो टुटे हुए हैं। इस गल नूं बड़ा ध्यान नाल ते सुरती दे टका दे नाल समझण की कोशिश करना। गुरु नानक पातशाह दे बचन ने, सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज फरमाउंदे ने कि संसार की पीड़ा जिहड़ी है ना, संसार के लोगों की तकलीफ यह नहीं है कि असी परमात्मा तो टुटे हुए हैं। संसार के लोगों की तकलीफ यह है कि असी सफल नहीं, असी जो चाहते हैं सानू वह नहीं मिलया। फिर जो तकलीफ यह है कि असी सफल नहीं हाँ, तो साडा सारा धर्म भी जिहड़ा उही हुंदा, गुरु कोल आके अरदास भी यही हुंदा कि सच्चे पातशाह सफलता बख्श, सच्चे पातशाह सुख बख्श, सच्चे पातशाह आ दे, सच्चे पातशाह आ दे। फिर जिहड़ा धर्म है वो इस तरह बन जाता है कि जिस तरह किसी चीज़ को मंगन लई है, साडी जिहड़ी असली मंग है, जिहड़ा असली परपज है धर्म का, जिहड़ा मन प्रीत चरण कमलारे तक लैके जाता है, वह विचों निकल जाता है। धर्म का अर्थ मंग के उत्ते रह जाता है कि असी गुरुद्वारे जावांगे, कुछ मंग मंगांगे। तो गुरु अर्जन पिता जी दियां मैं जो तुकां आप जी नाल सांझियां कीतियां सी, सुखमनी साहब दियां, सुखमनी सुख अमृत प्रभु नाम, दो चीज़ां संसार मंग रहे। एक सुख, कोई भी इंसान क्यों नहीं है दुनिया के किसी भी तल से, दुनिया के किसी भी प्रोफेशन के विच क्यों नहीं है, एक सुखी होना चाहता है, एक मरना नहीं चाहता। अमृत ए दो चीज़ां चाहते हैं असीं, और दूजी चीज़ ये दोनों चीज़ां भी कट्ठियां चाहते हैं कि जे किसी सुखी इंसान नूं जिहदे कोल वैल्थ काफ़ी है उन्हें पता लग जाए कि कल नूं मर जाना है, उहदा सुख भी सुख नहीं रह जाता। ते जे किसी इंसान नूं सानूं यह होवे कि साडी उम्र बहुत लंबी है पर सुखी नहीं होना, फिर सुसाइड कमिट करन नूं जी करदा, फिर मरना चाहुंदा। द बोथ थिंग्स आर टुगैदर। ते गुरु साहब कहिंदे दुनिया चाहुंदी की है, दुनिया चाहुंदी है कि असीं मरीए बिना ते असीं सुखी भी रहिए, दो चीज़ां चाहुंदे ते लभणियां कित्थों ने, वे डू वी फाइंड दोज टू। गुरु अर्जन पातशाह ने इस गल का एडा खूबसूरत जवाब इको तुक च दिता है, सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विसरा। ये नाम दे विचों चीज मिलनी है ते फिर उस दे असी नेड़े नहीं जांदे। उही सतगुरु सच्चे पातशाह ने अरदास इस शब्द दे विच कीती है, मेरे गोविंद अपने जन को दे वड्याई, गुरमत राम नाम प्रगासों सदा रहो शरणाई। मैं दो मिनट दे शब्द दे इन्हों दो तुकां दे अर्थ करके फिर आप समाप्ति वल नूं वधांगे। आओ प्यार नाल सारे एक बार फिर ये अरदास
ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਖਸ਼, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾ, ਚਾਨਣ ਪਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੋਰ ਅਸ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ।

सतगुरु सच्चे पातशाह अपने जन को दे वड्याई, ए मैनू आनर दे, ए मैनू माण दे कि गुरमत राम नाम प्रगासे, कि गुरु दी मत लैके। गुरमत का अर्थ हुंदा है थ्रू गुरुज एडवाइस। मैं गुरु दी एडवाइस लैके, गुरु दी मत लैके, गुरु दी सिक्ख्या लैके अपने जीवन के अंदर रोशनी पैदा कर सका। पर तुसी देख लो सारी हिस्ट्री, सारा इतिहास गुरु नानक साहब का पढ़ लो, की वंडन गए थे, की देन गए थे लोगों को, केड़ी चीज की घाट, वट वॉज लैकिंग इन दैट सिस्टम इन सोसायटी एट दैट टाइम विच गुरु नानक देव जी फेल्ट। एंड हाथ के कुछ भी नहीं है तो लैके की गए ने। भाई गुरदास जी ने बड़ा खूबसूरत किया है कि बाबा देखा ध्यान धर जलदी सब पृथ्वी दसिया। बाबे ने ध्यान ला के देखा ना तो एक एक इंसान को रोंदया कुरलाद्या देखे। और गुरु नवाजी गुरु संगत जी ये जो रोंदया देखा ना गुरु नानक साहब ने, उन्होंने सिर्फ गरीबा रोंदया नहीं देखा, जिन्हां नाल बेइंसाफी हो रही थी उन्हां नूं रोंदिया नहीं देखिया, सिर्फ उन्होंने एक एक व्यक्ति नूं राजा नूं रोंदिया देखिया, अहलकारां नूं रोंदिया देखिया, विद्वानां नूं रोंदिया देखिया, सोसाइटी के हर वर्ग नूं, हर इंसान नूं रोंदिया देखिया। किस चीज का रोना सी, क्यों क्यों रोंदिया देखिया? गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का जो डायग्नोज सी उस सोसाइटी का, वो अज भी उही है कि बाबा देखे ध्यान धर जलदी सब पृथ्वी दस्याई। तो गुरु ने देखा कि बाजों गुरु गुबार है, इंसान के जीवन चों गुरु निकल चुके हैं, जिन्हें जीवन नूं अगवाई देनी है, जिन्हें गुरमत देनी है, जिन्हें सिक्ख्या देनी है, जिन्हें सिखाउणा है। जदों गुरु दे गुरु जीवन चों निकल जाए तो फिर सिर्फ रोना रह जाता है। बाजों गुरु गुबार है तो फिर की है कि है कर दी, हाए हाए कर दी सुनी लुकाई, लोगों को रोंदया देखिया, कुरलाद्या देखिया। क्योंकि जो जीवन चों जिस शक्ति ने जीवन नू लाइट देनी है, जिस शक्ति ने जीवन नू चानण देना है, जिस शक्ति ने जीवन नू जीवन का मकसद देना है, जो वो निकल जाए तो फिर जीवन च रोना रह जाए। तो दोस्त की फुल who live their life with a purpose. Purpose की है कि तई प्राप्त मानक दे हुरिया गोविंद मिलन की। दूजा पर्पज यही है किब सचियारा हुई है किब कूड़ा पिता, आ पर्पज है कि मैं अपने जीवन च जोत पैदा किमें करा, अपने जीवन च चानण पैदा किमें कर सकां, ताकि चानण दे विच मैं देख सकां कि जीवन दे लई महत्वपूर्ण की है। सतगुरु सच्चे पातशाह दे वचन साडे सारयां दे हिरदे च वसन। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जी के असी अपने आप में कहाने हैं, तो फिर उन्होंने नज़र वाल मार के देखिए उन्होंने जीवन वाल के की देन गए से, की लोगों ने उन्होंने को मिले। जो समझ आती है तो उ कि जीवन से जो छुपया होया से सच्चे पातशाह जी ने वह प्रकाश किया, उन्होंने प्रगट किया, वो मत दिते जिदे नाल जो साड़ी संभावना है। अमृत वेले भी जो सवेरे भी सुखमनी साहब की विचार के भी जो साढ़े अंदर छुपया होया बीज है उन्होंने प्रगट किमें कर सकीए, उस मत सतगुरु ने सानू दिती, बख्शिश की। तो यही साढ़े जीवन का मकसद बने। जीवन से जो तक गुरबाणी गुरु सिमरन नहीं आता उदों तक यह गल बनती नहीं। साढ़े जीवन गुरमत आए, गुरु का सिमरन आए, बंदगी आए, कमां ते जाण तो पहला साढ़े जीवन की प्रियोरिटी बने कि असी अंदरों देख लिए कि साढ़े असी करना की चाहते, बनना की चाहते। पाठ करके टका देना नितनेम करके जदों असी जावांगे तो साढ़े काम के विच भी जिहड़ी है वह गुरमत नज़र आए, साढ़े वर्क के विचों भी गुरु दिखना शुरू हो, साढ़े वर्क के विचों भी वैदर वी आर साइंटिस्ट फॉर यू नो इन एनी फील्ड इन एनी प्रोफेशन वी आर इन द गुरमत शुड रिफ्लैक्ट इन आर प्रोफेशन। गुरु की जी मकसद मत है तो जोड़ा सा जिंदगी का मकसद है वह रिफ्लैक्ट करे, ना कि सिर्फ गलों के बचों। सतगुरु सच्चे पातशाह जी बख्शिश करन, आओ प्यार गा के फिर अरदास करिए, मेरे गोविंद अपने जन को दे वड्याई।

मेरा गुरु हुआ आज सहाय, सुख सहज आनंद मंगल रस अचर्ज पई बड़ा ये शब्द अस सुने तो बहुत बार हैं, सुख सुने हैं, सहज सुने हैं, आनंद सुने हैं, मंगल सुने हैं, रस सुने हैं, पर इन्हों का अनुभव कोई नहीं, इन्हों का पता कोई नहीं है कि सुख की है, सहज की है, आनंद की है, मंगल की है, रस की है। इन्हों शब्दों बारे साड़ी सिर्फ वाकफियत सुनन दी है, मानन दी नहीं। हालांकि साड़ी सारी जिंदगी की दौड़ यही है, वट आर वी लुकिंग फॉर इन लाइफ, आर एंड बी लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, द हु इज देयर इन दिस वर्ल्ड हु इज नॉट लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, who's there in this world who's not looking for peace.

रचना जपती वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

व्यापार भी है, अजीब किस्म का नहीं के व्यापार नहीं, नाते व्यापारी है, जिससे कुछ ले आता है कुछ देता जाए व्यापार। तो जीवन अंतर मनुख दे वक वक किस्म दे व्यापार ने, गुरु ने बाणी भी आख दिता, कहन लगे संसार है कि तिहटड़े बाजार, एक तिहटड़ा बाजार है। मैं एक बार की थी कि एक दरवाजे वाली दुकान नू हट्टी आखते सन, जिंदे दो काउंटर हो, दो दुकान चौड़ाई बढ़ जाए उन्होंने आखते सन फलाने का दुहट्टा चलना, जिंदे तीन काउंटर हो तिहटड़ा आखते, तीन हट्टियां जिंदा तिहटड़ा। गुरु कहते हैं रब का यह संसार जिहड़ा तिहटड़ा बाजार है, इत्थे रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी तीन तरह के व्यापारी ने, तिना के वक् वक् काउंटर, इस वास्ते तिहटड़ा बाजार है। इत्थे मात लोक पताल लोक आकाश लोक तिहटड़ा बाजार है, तीन तरह के खरीददार मौजूद ने, सौदा करने वाले जा रहे, हर किसी का अपना सौदा। हां सच वक्खर जिनी लद्या से सचड़े पसार, है तो व्यापार। सतगुरु ने बाणी में आके कह लगे जिन्ने जी ने सारे व्यापारी, जेते जी तेते बन जा रहे।

हर किसी को रास पूंजी दिती जा व्यापार कर। और ऐसे एक मसला है, व्यापारी तो हर कोई है, तो व्यापार जेड़ा है वो कुछ लेन देन आते हैं, पर ऐसे उस व्यापार के नाल एक लफ्ज जोड़ दिता गया है, वो है अमोलिक, अमूल, वो है अमूल। कल रात वाली पौड़ी विचों एक लफ्ज नाल मैं अगे तुरना चाहना, वो लफ्ज थी कि ओ प्रभु जिसनू तेरे ना तमाए, बहुता कर्म लिखे न जाए, ओ क्योंकि कर्म जेड़ा है, कर्म है, रहमत है, बख्शिश है, बख्शिश उसे आखते हैं जिंदे रिटर्न की लोड़ ना हो, तमा ना हो, लालच ना हो, प्रॉफिट ना देखा जाए, केवल बख्शिश हो। इसलिए उनके हिसाब लिखने की लोड़ नहीं होती, बहुता कर्म लिखा न जाए, क्यों? क्योंकि तो वड्डा दाता तेरे ना तमाए, तमा कोई नहीं। जिथे तमा कोई ना हो, हर चीज बख्शिश हो, उत्थे फिर मुल भी कोई नहीं होता। इथों घेरा मेरे रब का शुरू होंगे, अमोलक होता, क्योंकि रब किसी तमे नाल कोई चीज विकाऊ नहीं करता, दे रहा है, बेच नहीं रहा, दे रहा है, बेच नहीं रहा। इसमें उनकी वस्तु की कोई कीमत नहीं निश्चित कर सकता, पीछे भी लड़ी चल रही है कि उन्हें जो कुछ बनाया दिता है वो अमूल्य ही दिता है, मरण जीवन को धरती दी नहीं, गुरबाणी मरण जीवन को धरती दी नहीं, उन्हें मनुख नू रहने लई मरण जीवन लई वसन लई धरती दी बना दिता, उन्हें जीवन नू जीवन नू मनुख नू ए नहीं आख्या तेनू किन्नी धरती ते वसन दी लोड़ है, तू ओनी धरती मेरे को खरीद ले, बिल्कुल बना दे। मनुख ने बनाई नहीं, केवल कब्जा ही किया, बनाई नहीं केवल कब्जा ही किया, उसकी बनाई हुई धरती ते कब्जा करके इंचा दे हिसाब फुटा दे हिसाब वेच रहा है, क्योंकि इन प्रॉफिट की लोड़ है ना, तमा है ना, लालच है ना, ये कहता है आज खरीदा कल तो महंगी होगी तो बेच, तमे के पीछे इनका काम जिन्ना चल रहा है वो तमे नाल चल रहा है, इसलिए देख ला हालांकि बनाई हुई होती है, पर कि कहना रब ने जो कुछ प्रभु ने जो कुछ बनाया है वह बेचता नहीं, अमोलक है, बख्शिश विच देता है, उनका जिन्ना खेतर है जिन्ना घेरा है रब का प्रभु का वह सारा अमोलक है, वह जो कुछ भी बनाता है अमोलक ही बना, हाँ उत्थे आदान प्रदान है, ऐसी गल नहीं। और कैदी अजीब घटना जे वह आदान प्रदान का सिस्टम भी पैदा उन्हें अजीब किस्म का रखा, ताकि व्यापारी जरूर एक गल सोचने से कि व्यापार में है इन्हों परखन ले, जड़ी चीज के बदले चीज लै रहे हैं ना, वो चीज भी उनके कोलो नहीं लै रहे, आप ही उन्होंने दे रहे हैं, लै आज चीज के बदले में कुछ खरीद, तो जो ओ ही चीज वापस अपने को आती है जो उन्हें दिखी होती है, कि दीदीप कहते हैं किस किस्म का व्यापार है, हूँ शब्द पढ़िया जा रहा पैसा पढ़ रहे सब, कंचन
कंचन शो पाई है द